0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी।

पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजावेलु और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जी एनएच राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Standard. हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को प्रेरणा, मुस्कान, जानकारी और मधुर गीतों के रंगों से। मैं हूं आपके साथ इस सफर के रेडियो हम सफर सोनाली, और आप सुन रहे हैं, जी हां, कार्यक्रम घर आंगन। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत से जो यकीनन आपके मन को छू जाएगा।

फिल्म मिलन में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और देखिए परदेसी तो हम आपको बिल्कुल होने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, कहाँ जी हाँ घर आंगन में। और आप हमारे साथ जुड़ते कैसे हैं? आप हमारे साथ जुड़ते हैं एक ईमेल के जरिए जो है fmgold@gmail.com। तो बस आप हमारे साथ और दूर ना रहिए, अपनी बातें, अपनी सारी जो भी शिकायतें हैं, जो भी कॉमेंट्स हैं, जो भी आपकी हमारे लिए प्रतिक्रियाएं हैं वो आप जाहिर कर सकते हैं अपने ईमेल के माध्यम से। तो इंतजार रहेगा आपकी ईमेल्स का। दोस्तों आज है 17 जून 2026, दिन है बुधवार। तो ये तो हुआ कैलेंडर के हिसाब की तारीख, लेकिन आज हिंदू पंचांग के अनुसार एक ऐसी तिथि है जिस दिन को हम बहुत ज्यादा फख्र से और गर्व से याद करते हैं। दोस्तों इतिहास केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास हमें यह भी बताता है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है, अपने बुलियों की रक्षा कैसे करता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी मिसाल छोड़ता है। जी हाँ, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हिंदू पंचांग की तिथि अनुसार आज शूरवीर महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है और आज इनकी इस जयंती पर राष्ट्र उन्हें शत शत नमन करता है। और उनके लिए कुछ मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। सूर्य झुका झुक गए कलाधर, सूर्य झुका झुक गए कलाधर, झुके गगन के तारे, निखिल विश्व के शीश झुके न झुके प्रताप तुम प्यारे। जी हाँ, हम यहाँ से महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और आशा करते हैं उनके कार्यों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की मिट्टी ऐसी है जिसने हमेशा बहुत अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। भले ही शूरवीरों की बात हो तो वहाँ की जो वीरांगनाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी हमेशा अपने जीवन में ऐसे ऐसे अदम्य

ऐसी साहसिक और ऐसे ऐसे काम करती हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणा और एक उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महिला की जिनके बारे में मैं आपके साथ अब यहाँ पर कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। क्योंकि कहते हैं कि सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े साधनों की नहीं बड़े हौसलों की जरूरत होती है। राजस्थान की जो रूमा देवी हैं, उन्होंने सुई धागे को सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं बनाया बल्कि उसे हजारों ग्रामीण महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की डोर बना दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी का जीवन भी किसी साधारण ग्रामीण महिला की तरह ही शुरू हुआ था। कम उम्र में विवाह हुआ, सीमित शिक्षा और जीवन की कई चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी अपने हुनर का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें कढ़ाई और हस्तशिल्प का काम आता था और यही हुनर आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। रूमा देवी ने अपने हाथों की कला को सिर्फ अपनी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी साथ जोड़ा और उन्हें कढ़ाई व हस्तशिल्प के काम से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ये जो प्रयास है वो एक कारवा बन गया दोस्तों, और जिन महिलाओं की दुनिया कभी घर की चौखट तक सीमित थी ना, वे अपने हुनर के दम पर नई पहचान बनाने लगी। शायद रूमा देवी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन हाथों से वे रंग बिरंगी कढ़ाई करती हैं, वही हाथ एक दिन हजारों महिलाओं के सपनों में भी रंग भर देंगे। आज उनके साथ जुड़कर राजस्थान की हजारों महिलाएं अपने हुनर को देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं बल्कि उन महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है जिन्होंने अपने हुनर पर भरोसा करना सीखा। रूमा देवी की कहानी दोस्तों हमें ये भरोसा दिलाती है कि बदलाव हमेशा बड़े मंचों से नहीं शुरू होता, कई बार एक सुई, एक धागा और एक महिला, इनका हौसला ही हजारों जिंदगियों में उम्मीद के नए रंग भरने के लिए काफी होता।

अपने हुनर को देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं बल्कि उन महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है जिन्होंने अपने हुनर पर भरोसा करना सीखा। रुमा देवी की कहानी दोस्तों हमें ये भरोसा दिलाती है कि बदलाव हमेशा बड़े मंचों से नहीं शुरू होता। कई बार एक सुई, एक धागा और एक महिला, इनका हौसला ही हजारों जिंदगियों में उम्मीद के नए रंग भरने के लिए काफी होता है।

फिल्म गहरी चाल। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। अब देखिए, हम राजस्थान से तो हुए और सबसे ज्यादा जरूरी देखिए, हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और आजकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। हम भले एक्सरसाइज करें और आजकल लेकिन एक चीज का सबसे ज्यादा चलन है और वो है योग। दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन बनाने की एक सुंदर कला है, खासकर महिलाओं के लिए जो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। योग उनको खुद से जुड़ने का एक सरल और सहज रास्ता बन सकता है। घर हो या ऑफिस, महिलाएं अक्सर परिवार, काम और रिश्तों के बीच अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कई बार वे अपनी जरूरतों और अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रख देती हैं। ऐसे में योग हमें याद दिलाता है कि दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, योग का जो मतलब होता है वो सिर्फ व्यायाम नहीं होता, ये अपने मन को शांत करने, अपनी सांसों पर ध्यान देने और कुछ पल अपने लिए निकालने की एक प्रक्रिया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लोग योग को सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली का हिस्सा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है दोस्तों कि नियमित योग और ध्यान तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और जीवन में पॉजिटिविटी लाने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकते हैं। शायद योग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हमें कुछ देर के लिए रुकना सिखाता है, अपनी सांसों की आवाज सुनना सिखाता है और ये एहसास दिलाता है कि जीवन के व्यस्त राहों में खुद के लिए कुछ पल निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तो जीवन की चुनौतियां भी थोड़ी आसान लगने लगती हैं। और शायद यही योग का सबसे बड़ा संदेश है

0: फिल्म कुदरत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हमने बात की महिलाओं की फिटनेस यानी उनका योग के प्रति वो कितनी ज्यादा जागरूक हो सकती हैं और योग उनके जीवन में कितनी ज्यादा तब्दीलियां ला सकता है, ये हमने बात की। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, बच्चों के लिए भी योग उतना ही जरूरी है और इस विषय पर हम आज आपके लिए एक बातचीत लेकर आए हैं जो है बच्चों के लिए योग। और इस विषय पर बातचीत कर रही हैं देविका श्रीवास्तव से रश्मि कुकरेती। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत को।
1: कार्यक्रम है घर आंगन और चैनल आपका वही, आपका पसंदीदा आकाशवाणी एफएम गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है योग बच्चों के लिए। जब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो पता है बच्चे बहुत खेलते हैं, कूदते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा सा बच्चे जो मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, उनसे ज्यादा जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे वो जुड़े योग के साथ। और योग से जोड़ने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को। वो आज आपको बताएंगी कि बच्चों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, कैसे योग से जुड़ना चाहिए। देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: हरिओम, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है, मैं एक योग शिक्षक और एक योग विद्यार्थी हूँ।
1: तो देविका, सबसे पहले ये बताएं, आजकल जो बच्चे हैं, देखिए सवेरे उठे, दूर स्कूल है, तैयार हुए, स्कूल चले गए, आए, थोड़ा बहुत कुछ खाया, नहीं खाया, हाथ में लिया कुछ ना कुछ स्क्रीन, या चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो क्या ये लाइफस्टाइल सही है?
2: स्क्रीन टाइम बच्चों का हो, मैं मना नहीं करती कि स्क्रीन टाइम नहीं दे, बच्चों को वो टाइम दे, लेकिन हाँ, कि ये माइंड फ्रेश करने से ज्यादा बेटर है आप उनको गेम्स के लिए मोटिवेट कीजिए। पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम जरूर आएंगे। जैसे अभी बच्चों को बहुत कम एज में उनको बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, कुछ बच्चे अस्थमेटिक हो जाते हैं, कुछ बच्चे लथार्जी की वजह से उनका बॉडी वेट बहुत बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो उनका मेंटल कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है।
1: तो ये सब चीजें ना हो तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए बच्चों की?
2: बच्चों की लाइफ में मैं ये नहीं कहूंगी आप स्पोर्ट्स जोड़िए, क्योंकि बच्चे योगा की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उनका यही सोचना है सांस लेना सांस छोड़ना इट्स टू बोरिंग। तो नो,
1: उनको सांस लेने से ही जिंदगी चलती है,
2: अभी वो इतने नहीं समझदार। तो आप उनको योगा कराएं, आप उनको उनके तरीके से योगा कराएं,
1: पर
2: योगा कराएं जरूर, इंटरेस्टिंग बनाइए योगा को, स्पोर्ट्स के नजरिए से कराइए, स्कूल में उनको पार्टिसिपेट दिलवाइए योगा कॉम्पिटिशन में, ताकि वो कॉम्पिटिशन के लिए सही पर वो योगा करना शुरू करे, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा, वो अपने लाइफ में उसको उतार लेंगे, धीरे धीरे वो समझने लगेंगे कि योग क्या है, वो खुद ब खुद लाइफ में उतार लेंगे। बहुत बच्चों का योग में इंटरेस्ट नहीं होता, आप उनको स्पोर्ट्स करवाइए, आप उनको, मैंने देखा है पेरेंट्स को
1: क्रिकेट खिलवाएं, वॉलीबॉल खिलवाएं, फुटबॉल खिलवाएं,
2: स्कूल बाहर आप
1: खिलवाएं जी,
2: यस बाहर आप उन्हें जैसे ट्यूशन के लिए ले जा रहे हैं तो एक घंटा आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी लेके जाइए।
1: और आजकल देखिए

0: बहुत अच्छी बात है तैराकी, है ना, ठंडा भी रहता है, अच्छा लगता है, खुश होके तैरने जाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी व्यायाम है तैराकी करना। हालांकि ये तो व्यायाम, हम तो बात योग की कर रहे हैं,
1: कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को योग कह सकते हैं।
0: एक जो हम दिनचर्या की बात कर रहे थे, बच्चा उठा तो हम कैसे उसको योग की तरफ जोड़े?
1: स्कूल टाइम में भी आप योग इंक्लूड कर सकते हैं, स्कूल के बाद जब वो आए हैं कोशिश कीजिए वो उस टाइम बात ले सकें ताकि वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि स्कूल से आने के बाद अक्सर बहुत थकावट होती है बच्चों को, क्योंकि वो उनके वजन से ज्यादा भारी बस्ते लेके जाते हैं,
0: ये तो है।
1: जिससे बस्तों के झुकाव की वजह से बहुत से बच्चों को सर्वाइकल हो जाता है, क्योंकि बस्ता इतना भारी होता है उसका वजन, कंधे झुक जाते हैं,
0: गले में पानी की बॉटल लटकी होती है जी।
1: तो गर्दन इतना लटका देंगे तो फिर बेचारी सीधी नहीं रहे। तो वही चीज है, अब उनको सर्वाइकल की बीमारी है, उनको लेट नहीं पसंद है, अक्सर उनको सहारा लेके, आजकल के बच्चे भी सहारा ले लेके बैठते हैं, आप कभी नोटिस करिएगा बिना सहारे के कोई बच्चा नहीं बैठ पाएगा कमर सीधी करके,
0: ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है।
1: बिल्कुल, तो आप उनको वो छोटी छोटी आदतों को उनकी अवॉइड कीजिए। शाम को एक टाइम कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या योगा आप खुद करिए, तो वो आपको देख के खुद ब खुद सीख जाएंगे।
0: हर कोई चाहता है कि बच्चे की जो ऊंचाई हो वो खूब अच्छे से हो, हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे ऊंचे लंबे हो, तो अगर ऊंचाई बढ़ाने की बात हो, हम देखते हैं कई बार बच्चों को हम शुरू से ही किसी ना किसी प्रैक्टिस में किसमें डालें कि बच्चे की हाइट और ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि हर माँ बाप चिंतित रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे का कद छोटा रह जाए, क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल, उसके लिए योगा का एक आसन है ताड़ासन
0: जी,
1: जो बहुत इजी है और बच्चे अक्सर बहुत एक्साइटमेंट से करते हैं, क्योंकि उसमें बैलेंस बनाना होता है, और जब साथ वाला बच्चा गिर जाता है तो दूसरे को बहुत मजा आता है, तो वो कंपटीशन उनके लिए एक छोटा सा हो जाता है, तो वो कंपटीशन खेलने खेलने के सहारे ही अच्छे परफॉर्मेंस दे जाते हैं, वो खुद का अपना 5 मिनट्स, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, वो जिद के चक्कर में वो 15 सेकेंड होल्ड कर लेते हैं, तो वो जिद भले ही थी लेकिन वो 15 सेकेंड का होल्ड बेनिफिशियल तो उनकी अपनी बॉडी के लिए है
0: जी, जी।
1: तो जैसे बच्चे खेलने निकलते हैं तो उस समय कोई एक ऐसा हो जो उनको खिलाने के सहारे ही उनको बीच बीच में कुछ कुछ योगा करा दे।
0: आजकल तो मैंने देखा पार्क में भी जैसे बच्चे शाम को जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होता ही है, पेरेंट या कोई ना कोई ऐसे टीचर भी कई पार्कों में जुड़े हुए हैं जो कि योग करवा रहे हैं बच्चों को, चाहे उसका रूप बदल कर हो।
1: बच्चों के लिए आपको योग का रूप थोड़ा तो बदलना ही पड़ेगा, आप उन्हें समझाएंगे कि बेटा योग ये है, बेटा योग ऐसे बेनिफिशियल है, योग में ये चीजें हैं, वो डेफिनेटली बोर हो जाएगा।
0: और पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बहुत सारे स्कूलों में योग पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, जो कि वाकई बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है, और हम देखते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही पहले से बेहतर होता है।
1: बिल्कुल,
0: एक समस्या जो आती है कि हम देखते हैं कभी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं पर बच्चों का ध्यान कहीं हो रहा है, आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल का काम करे, लेकिन देख रहे हैं कभी बच्चा यहाँ देख रहा है, कभी वहाँ देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, एकाग्रता नहीं है। तो एकाग्रता के लिए योग किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है?
1: एकाग्रता के लिए बच्चों को योग तो कराना ही है, दूसरी चीज उनको एक अलग से छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आपको उनका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा
0: जी।
1: कोशिश कीजिए स्क्रीन टाइम कम हो, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, खाने में कुछ चीजें ऐसी दीजिए जो वो खुशी से खाएं, क्योंकि तोरी और टिंडे देख के हमें भी दिक्कत हो ही जाती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ पार्ट खाने का ऐसा रखिए, अगर पॉसिबल है तो, कि वो खुश होके खाएं, तो वो फोन भूल जाएंगे उसके आगे।
0: मुझे लगता है जो बच्चे सुन रहे हैं वो बड़े खुश होंगे कि मैम कह रही है तोरी टिंडे में उन्हें भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये बता दूं वो खुद तोरी टिंडे अच्छे से खाती हैं।
1: मैं ये कह सकती हूँ कि पनीर जो फायदा नहीं दे सकता वो तोरी टिंडे दे सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी है खाने
0: जी। और तोरी टिंडे के जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, यानी कि कद्दू और दूसरी सब्जियां, वो भी खानी है, क्योंकि हरी सब्जियां तो हम सब जानते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। बच्चों, इन्हें अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाना है। हाँ, तो देविका जी बता रही थी एकाग्रता के लिए।
1: बिल्कुल, बच्चों को अक्सर होता है कि नहीं पालक नहीं खानी।
0: हाँ,
1: पालक जरूर खाएं क्योंकि उसमें आयरन है।
0: पालक पनीर खा लें।
1: हाँ, पालक पनीर खा लीजिए, पालक के पकौड़े खा लीजिए, वो ज्यादा नहीं खाने, थोड़े थोड़े खाने।
0: हाँ, और पालक हम जैसे कई बार हम ये भी करते हैं, पालक उबाल के आटे में गूंद देते हैं, उसके पराठे बना के बच्चे बहुत पसंद करते हैं, पालक पूरी बच्चे खाते हैं।
1: पालक खिलाइए, आंवला आपको बच्चों को किसी भी तरह से खिलाना है, अचार के रूप में खिलाइए, आंवला रस के रूप में पिला दीजिए, छोटा सा एक घूंट भी पिला देंगे सुबह से, बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि उससे उनकी IQ लेवल बढ़ेगा। तो बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया कहते हैं योगा में, जिसे कहते हैं त्राटक।
0: अच्छा,
1: हाँ जी। उसको क्या करना है, आपने सतिया हो या तो, या फिर कोई भी दिया जला दें, मोमबत्ती जला दें,

0: बच्चे को बिठाएं, आप भी करें उसको भी कराएं, कि वो कंटिन्यूअस उस ज्योत को देखे।
1: अच्छा,
0: उसके टिप को देखे, या किसी पेन की टिप से करा दीजिए। कंसेंट्रेशन उससे बहुत अच्छा बढ़ेगा, बच्चा अपने आप को कंट्रोल करना सीखेगा। बच्चा फोकस करना जब सीख जाएगा तो उसको खुद समझ आएगा कि वो पढ़ाई उसके लिए जरूरी है, को पढ़ाई अच्छे से करेगा, उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा।
1: तो बाकी बहुत अच्छी जानकारी देविका, मुझे विश्वास है जो बच्चे सुन रहे हैं, जो खाने की जो सामान बताया है कि अच्छे से खाना खाएं, अपनी डाइट अच्छा करें, ताड़ासन करें अपनी, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि वो आप अच्छी से हाइट हो, है ना, खूब मस्ती करें, खूब खेलें, पार्कों में योग से जुड़े, और जैसा कि आप बता रही हैं कि त्राटक करें, प्राणायाम करें। योग दिवस भी आने वाला है, तो हम क्यों ना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। फिलहाल हम देविका दीदी को कहते हैं बाय, इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। देविका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, हरिओम।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए योग, इस विषय पर देविका श्रीवास्तव से रश्मि कुकरेती की बातचीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम घर आंगन में।

चाहती कि हमारे साथ हमारे कुछ बेहद प्रिय श्रोता जुड़ चुके हैं। खैर, हमारे सारे श्रोता बहुत प्रिय हैं हमें, और ये हमारे बहुत नियमित श्रोता भी हैं। तो ये हैं हमारे साथ गौरी शंकर जी, नांगलोई से दिखते हैं। सोनाली बेटा राम राम। अभी तक तो बेटा प्रोग्राम में कोई शिकायत नहीं है जो करेंगे। अच्छा, तो आप मेरी उस बारे में बोल रहे हैं जिसमें मैंने कहा था आप अपनी शिकायतें भी हमारे साथ साझा जरूर करें। तो चलिए, जानकर अच्छा लगा कि आपको अभी तक कार्यक्रम से कोई शिकायत नहीं है, और आशा करते हैं आगे भी नहीं होगी। और फिर आप आगे लिखते हैं कि प्रोग्राम सुनकर तबीयत खुश हो जाती है, आपकी आवाज भी जानदार है। अरे जी, शुक्रिया। और फिर आप लिखते हैं कि योग तो शरीर में अमृत का काम करता है। तो बिल्कुल, और अगर आपने अगर अभी तक योग को अपना जीवन का एक हिस्सा नहीं बनाया है, तो आपसे हमारी गुजारिश है उसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। फिर इसके बाद हमारे साथ है हमारे एक और नियमित श्रोता सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और ये भी लिख रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा पाता। धन्यवाद आपके इस विचार के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए भी। फिर हमारे साथ है नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, लिख रहे हैं सोनाली जी नमस्कार। उनका आज का विचार है मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। बिल्कुल, हमेशा अपने आप को एक टाइम टेबल में बांध कर चलिए। कभी भी व्यस्तता अपने जीवन में रखिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। बहुत सही बात आपने की, तो आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आइए अब आपको लिए चलती हूँ ऊंचे देवदार के पेड़ों के पास, जहाँ पर पार्वती नदी की कलकल और पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत सा गांव कसोल है ना। यहाँ पर बैठे बैठे मन एकदम खुश हो गया ना, एकदम ठंडक पहुंच गई। तो प्रकृति प्रेमियों और सुकून की तलाश करने वालों के लिए ये जगह ना किसी जन्नत से कम नहीं है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के इस मनमोहक पर्यटन स्थल की सैर पर। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो कसोल आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा ये छोटा सा गाँव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुँचते ही ना देवदार के ऊंचे पेड़, पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा और पार्वती नदी का मधुर संगीत आपका स्वागत करते हैं, और यही वजह है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप भी कसोल घूमने का मन बना रहे हैं ना, तो कुछ बातें आपके काम आ सकती हैं। मसलन, कसोल जो है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित है, ये तो हमने आपको पता ही दिया। फिर ना सबसे नजदीक इसका जो हवाई अड्डा है वह भुंतर एयरपोर्ट, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और चंडीगढ़ से बस या निजी वाहन द्वारा आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून, मतलब जून बस खत्म होने वाला है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, तो जरूर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो एक तो मार्च से जून का समय बहुत अच्छा है, और फिर है सितंबर से नवंबर के बीच का समय। फिर यहाँ पर खीर गंगा, तोश और मलाना जैसी लोकप्रिय जगहों की यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहीं से शुरू होती है। और अगर आप वहां पर जाएं ना, तो प्रकृति का सम्मान जरूर करें दोस्तों, प्लास्टिक कचरा ना फैलाएं, और पहाड़ों की उस शांति को महसूस करने की कोशिश करें जो अक्सर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो जाती है, क्योंकि कई जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और कसोल ऐसी ही एक जगह है जहाँ पहाड़, नदी और खामोशी मिलकर आपको कुछ पल खुद के साथ बिताने का अवसर देते हैं। और जब आप पहाड़ों को देखते हैं, और जब पहाड़ों पर मेघ उतरते हैं, और जब वो ठंडक आपको देते हैं, तो उसको देखकर ही आप अपने अंदर अपने शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति का आनंद लेते हैं।

कारण जाग उठा इंसान में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा डाकघर जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता हो। सुनने में भले ही ये किसी कहानी जैसा लगे लेकिन भारत में ना एक ऐसा डाकघर सच में मौजूद है।

खूबसूरत डल झील में स्थित ये तैरता हुआ डाकघर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। डल झील में बनी इस अनोखे डाकघर की शुरुआत 2011 में की गई थी। एक पुराने हाउस बोट को डाकघर का रूप दिया गया था और आज तक ये कश्मीर की पहचान का एक खास हिस्सा बन चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक सिर्फ डाक टिकट नहीं खरीदते हैं बल्कि अपनी प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भी भेजते हैं। सोचिए किसी को ऐसी चिट्ठी मिले जिस पर डल झील के तैरते हुए डाकघर की मोहर लगी हो तो वह कितनी खास याद बन जाएगी ना। और अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो इस अनोखे डाकघर को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें, क्योंकि ना एक तो ये यहाँ की प्रसिद्ध डल झील में स्थित है और ये दुनिया के अनोखे और चुनिंदे तैरते हुए डाकघरों में गिना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटा सा डाक संग्रहालय भी है जहाँ पुरानी डाक टिकट इतिहास से जुड़ी उनकी रोचक जानकारियाँ ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप जाकर विशेष स्मारक डाक सामग्री भी खरीद सकते हैं और पोस्ट कार्ड तो खैर खरीद ही सकते हैं। तो आज भले ही दोस्तों संदेश कुछ ही सेकंड में मोबाइल पर पहुंच जाते हों लेकिन हाथ से लिखी गई चिट्ठियों का अपना एक अलग ही आकर्षण था और है और रहेगा। शायद यही वजह है कि डल झील का यह जो तैरता हुआ डाकघर है ना कि आज भी लोगों को चिट्ठियों की उस खूबसूरत दौर की याद दिलाता है जब शब्दों के साथ इंतजार भी भेजा जाता था।

जी मिसाल फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गाना जिसे गाया सुरेश वाडकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अब दोस्तों ये घड़ी जो है ये हमें और अनुमति नहीं देती कि आपके साथ बातों का सिलसिला और जारी रखें, तो बस इस कार्यक्रम से आज मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, टीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. और श्रोताओं, अब वक्त है आपके और हमारे हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से का. और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सिनेमा के उस सुनहरे दौर की एक और अनकही अनसुनी दास्तान. दोस्तों, साल था 1963. उस दौर में जब पर्दे पर प्यार और संगीत की नई परिभाषाएं लिखी जा रही थी, तब एक ऐसी फिल्म आई जिसने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी और साथ ही साथ गुनगुनाने पर मजबूर भी कर दिया. जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ राज कपूर और नूतन की फिल्म क्लासिक फिल्म दिल ही तो है की. लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत.

दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी उतने ही दिलचस्प इसके बनने के पीछे के किस्से हैं। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं इस फिल्म की लाजवाब स्टार कास्ट और इसकी कहानी की ओर। साथियों, फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर और उनके साथ थी अपनी संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर हीरोइन नूतन। जी हाँ साथियों, कहानी है यूसुफ यानी राज कपूर की, जो एक अमीर घराने के लड़के हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर एक शायर और कव्वाल चांद बनकर रहते हैं।

दोस्तों, चांद को मोहब्बत हो जाती है जमीला नाम की एक लड़की से जो कि नूतन है। झूठी पहचान, गलत फहमियां और फिर उस प्यार को पाने की जद्दोजहद। रावलपिंडी के बैकड्रॉप पर बनी यह एक मुकम्मल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी।

दोस्तों, राज कपूर का ओल्ड मैन लुक, क्या आप जानते हैं? इस फिल्म में राज कपूर ने सिर्फ एक कव्वाल का ही नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी का भेष भी बदला था। उनका यह गेटअप इतना परफेक्ट था दोस्तों कि सेट पर जब वो पहली बार गए तो उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया था।

साथियों, मन्ना डे और शास्त्रीय संगीत का जादू। दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना जो अभी हमने आपको सबसे पहले सुनवाया था, लागा चुंदरी में दाग, संगीतकार रोशन साहब ने जब मन्ना डे को यह गाना ऑफर किया तो मन्ना डे पहले घबरा गए थे, क्योंकि यह एक बेहद कठिन शास्त्रीय बंदिश पर आधारित था गाना। लेकिन अब उन्होंने गाया तो यह गाना एक इतिहास बन गया। साहिर लुधियानवी की शायरी, इस फिल्म के गीत महान शायर साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का टाइटल जो है दिल ही तो है, असल में मिर्जा गालिब की एक मशहूर गजल से प्रेरित था।

साथियों, अमूमन देखा गया है कि प्राण साहब का जो फिल्मों में किरदार होता है वो थोड़ा सा खतरनाक विलेन का होता है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में उन्होंने शेखू का ऐसा किरदार निभाया जो थोड़ा सा कॉमिक था और थोड़ा बहुत विलेनियस भी था। राज कपूर और प्राण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस फिल्म में देखने लायक थी।

दोस्तों, अगर आपने 1963 की यह मास्टरपीस फिल्म दिल ही तो है अब तक नहीं देखी है तो आप जरूर इसे देखिएगा। इसमें राज कपूर की मासूमियत और नूतन की सादगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमनदीप। पहला चुनावियां खबरां। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थाओं विच महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय साल 2025-26 विच भारत दा सालाना रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर ते पहुंच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 सालों में नागरिकों की सुरक्षा से दुश्मन की तबाही लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट मैच में आज भारत का नीदरलैंड से मुकाबला होगा। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। इस मुलाकात से सब दी नजरां ने भारत G7 सम्मेलन विच एक भाईवाल देश है। श्री मोदी ते श्री ट्रंप विचकार आखिरी मुलाकात पिछले साल फरवरी च अमरीका च हुई सी। अज दी मीटिंग विच दोवें धिरां विचकार कई खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करन ते आपसी हित दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते व्यापक चर्चा होण दी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज एक होर G7 सैशन विच भी हिस्सा लैणगे। इसका विषय है सारिआं दे लाभ लई संतुलित समावेशी अते निरंतर आर्थिक विकास नूं मुड़ शुरू करना। ओह मुद्रा फंड नूं सुरक्षित तेज अते प्रभावशाली ढंग नाल लागू करन ते एक वर्किंग लंच विच भी शामिल होणगे। कल शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, बरतानिया दे प्रधानमंत्री कीर स्टामर अते UAE दे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहायन नाल मुलाकात कीती। उन्होंने केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिसर के राष्ट्रपति अब्दुल फता अल सीसी, जापानी प्रधानमंत्री सने ताकाइची और दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग नाल भी मुलाकात की। श्री मोदी अज शामी फ्रांस की राजधानी पैरिस पहुंचणगे। साडे पत्रकार ने खबर दी है कि भारतीय भाईचारा प्रधानमंत्री की बेसब्री नाल उड़ीक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थावां विच आत्म निर्भरता ते नवीनता ते तकनोलोजी ते स्वदेशी निर्माण की सहायता नाल महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते माई गोव तों एक पोस्ट सांझी करदिआं प्रधानमंत्री ने इस गल ते चानणा पाया कि किवें भारत ने उन्नत स्वदेशी तकनोलोजियां की सहायता नाल जमीन, समुंदर ते हवा विच अपनी रक्षा समर्थावां नूं मजबूत कीता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत के रक्षा खेत्र में हुए बदलाव को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्तीय साल 2025-26 में भारत का सालाना रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर से पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्राप्ति पिछले वित्तीय साल में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन के मुकाबले 15% के वध प्रभावशाली वाधे नूं दर्शाउंदी है। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्तीय साल 2013-14 विच 4,746 करोड़ रुपए के मुकाबले 4 गुणा वध गया है। राष्ट्रीय महत्ता की एक प्रमुख संस्था पंजाब ने फुटवेयर डिजाइन एंड डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI नाल एक रणनीतिक समझौता पत्र से दस्तखत करके अपने खेडां दे समान, जुत्तियां ते चमड़े दे समान दे खेतर नूं मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम चुकया है। पंजाब दे उद्योग ते वणज विभाग वालों हस्ताक्षर किए गए समझौते का उद्देश्य इन खेत्रों में उद्योगों नूं आधुनिक टैसटिंग बुनियादी ढांचे, हुनरमंद मनुखी शक्ति, डिजाइन ते नवीनता सहायता ते मजबूत बाजार संबंधा तक पहुंच प्रदान करना है। इस साझेदारी नाल पंजाब अधारित सूखम, छोटे ते दरमियाने उद्यमां दी मुकाबलेबाजी दे वधण दी उम्मीद है, जिस नाल ओह राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेनां नाल जुड़ सकणगे। इस नाल उन्हां नूं बरामद वधाउण दी वी उम्मीद है। इस समझौते से उद्योग अते वणज विभाग के डायरैक्टर जसप्रीत सिंह अते FDDI दे प्रबंध निर्देशक विवेक शर्मा ने दस्तखत किए। इस पहल

0: G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ 1,78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ICC ਮਹਿਲਾ 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसला कुन कार्रवाईयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियों में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अपने दौरे के दूसरे दिन आज आला सतह के कई आउटरीच प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अलबत्ता सबकी तवज्जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दो तरफा मुलाकात पर है, जो आज शाम मुनक्किद होगी। फरवरी 2025 में वाशिंगटन DC में इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त से अब तक ये इन दोनों रहनुमाओं की पहली बिलमुशाफा मीटिंग है। बातचीत के दौरान उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बहुत से शोबों में भारत अमरीका दो तरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों और बाहमी मफाद के कलीदी नोयत के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम एक वर्किंग जलसे में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के मफाद के लिए मुतवाजन, सबकी शमूलियत वाली और पायदार इकतसादी तरक्की को फरोग देना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के अलावा जनाब मोदी एक वर्किंग लंच में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है मस्नूई जहानत से महफूज, तेज रफ्तार और मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाना। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अरकान उनकी आमद के मुंतजर हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई साजो सामान की सालाना तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान तक का 1.78 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस अहम हुसूलियाबी से पिछले साल की 1.54 लाख करोड़ रुपए की पैदावार के मुकाबले 15.6% तरक्की का इजहार होता है। ये तरक्की माली साल 2020-21 से अब तक की 110% है, जब ये तरक्की महज 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई साजो सामान की मकदार में माली साल 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जो महज 4,746 करोड़ रुपए था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाज़े पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेकाम मिला है, जो जदीद बनी है और जमीन, समंदर, फजा, साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफर से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील और मजीद पुरेतमाद भारत की अक्कासी होती है, जो अपने कौमी मफादात

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

0: योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज का यह पूरा घंटा, आधा घंटा समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस कलाकार

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की।

0: तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।

0: hlavně kočka.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: बैठक के बाद बैठक हो रही थी, माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
3: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे हीरो ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
3: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े,
4: बिल्कुल
2: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
3: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
2: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
5: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
6: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब
7: जिंदाबाद,
6: इंकलाब जिंदाबाद।
2: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
8: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
2: सारी छावनी में खलबली मच गई।
9: उसके बाद क्या हुआ दादी?
2: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
5: अरेस्ट करो,
8: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
4: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
9: दादी जी, फिर क्या हुआ?
2: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Bande ko thi kona mangta hai. Durant hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय

0: मंगल पांडे ने छाती तान कर खुले शब्दों में कहा,
1: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
2: क्या कोई कार्रवाई हुई?
0: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
0: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई, लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: देवेंद्र, नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ।
8: लो, देवेंद्र भी आ गया।
9: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
7: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो, और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ।

0: आशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
2: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
3: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
2: लड़की हट, ये चाकू देख रही है ना?
3: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
1: अरे
3: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
1: क्या हुआ? देखो जल्दी,
0: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
2: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
2: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो, मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
0: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
2: जल्दी,
0: याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
3: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे बात को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
2: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
3: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
1: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
1: हेलो।
5: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा।
5: हाँ
1: पापा।
5: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
5: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना, सबकी जान
0: बहादुर है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।

0: मीडियम इंकाचेस आकाशवाणी करगिली कना जेन्यो दुआ
1: अत्ता किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

3:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। तहरीर होगी जनाब ओम शर्मा की। 4 बजे आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ ले सकेंगे जिसमें आप नगमे सुनेंगे।

बजकर 50 मिनट पर आप खबरें सुनेंगे और 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। G7 रहनुमाओं ने कई ऐलामियों को मंजूरी दी है, जिनमें आलमी इस्तेहकाम, सलामती से मुतालिक ताउन और मुल्कों के माबैन मुनज्जम जरायम से निपटने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो 2020-21 से

110% इजाफा है। और हिफाजती दस्तों ने मणिपुर में कानून नाफिज करने और शोरिश पसंदी से निमटने की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 26 गैर कानूनी बुनकर्स को मुनहदिम किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर ईवान में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक अहम वर्किंग सेशन में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मौजू सभी के मफाद के लिए मुतवाजिन, सबकी शमूलियत वाली और पायदार इक्तसादी तरक्की को फरोग देना। इस आला सतही सेशन में G7 के रुकन ममालिक, शराकत दार ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड्स नीज OECD के कलेदी नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो तरफा मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो आज शाम होने वाली है। ये मीटिंग इस लिहाज से इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है कि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और बैनुल अक्वामी बरादरी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए नई दिल्ली की तरफ देख रही है। आलमी मुद्दों पर तबादले ख्याल को तश्कील देने में भारत का बढ़ता हुआ रोल, इसकी सफारती पहुंच और बड़े फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ शराकतदारी की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर के साथ मीटिंग के अलावा वज़ीर आज़म मोदी एक वर्किंग लंच में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है मसनूई ज़हानत के महफूज, तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना। इस मीटिंग में G7 के रुकन ममालिक, शराकत दार ममालिक और AI कंपनियों के CEOs डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करने के लिए एकजा होंगे। वज़ीर आज़म मोदी यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आज़म जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिच मज की भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंच जाएंगे। भारतीय बिरादरी के अरकान उनकी आमद के मुंतजिर हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत के दिफाई सलाहियतों में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुद कफालत के नजरिए की रहनुमाई में हुआ है, जिसे इख्तरा टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवीत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर MyGOV के जरिए पैगाम भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फजा, जमीन और समंदर में अपनी दफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क में ही तैयार की गई टेक्नोलॉजीज को जदीद तरीन बनाया है और खुद इन्हिसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है, जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाजह पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेहकाम मिला है। मुसल्लह फौजें जदीद बनी हैं और जमीन, समंदर, फजा, साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफर से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील और मजीद पुरएतमाद भारत की अक्कासी होती है, जो अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है और एक कायदाना आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई साजो सामान की सालाना तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान अभी तक का 1.78 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस हुसूलियाबी के लिए से पिछले साल की 1.5 लाख करोड़ रुपए की पैदावार के मुकाबले 15.6% तरक्की का इजहार होता है। यह तरक्की माली साल 2020-21 से अब तक की 110% है, जबकि तरक्की महज 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। जमीन के बंजर होने और खुश्क साली की रोकथाम

微微अभी आपने फिल्म जबक का ये नगमा सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और आप समाप्त कीजिए यहूदी फिल्म से नगमा, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना फिल्म यहूदी में। और लीजिए आप सुनिए बेवकूफ फिल्म से यह नगमा। आवाजें हैं आशा भोसले और मन्ना डे की।

अच्छा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में आपने ये नगमा सुना। और अब पेश है उमर कैद फिल्म से नगमा, आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, गीतों भरी कहानी। ये आज जिम्मेदारी उन्वान के तहत ये कहानी सुनिए और इसमें आप नगमे सुनेंगे। तहरीर है जनाब ओम शर्मा की।

राकेश एक ऊंचे घराने का लड़का था, मन्नतों से मांगा, नाजो नेम से पला। कभी किसी तरह की कमी ने जिंदगी में उसका सामना नहीं किया था। रजनी को उसने पहली बार अपने कॉलेज में देखा था और तब से ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे रजनी से ज्यादा खूबसूरत, रजनी से ज्यादा मासूम, रजनी से ज्यादा समझदार कोई और नहीं है। उसका जी चाहता था वो रजनी को बुलाए, उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसके साथ मिलकर बाहों में बाहें डालकर घूमे, नाचे, गाए और सिवाय रजनी के दुनिया की हर चीज को भूल जाए। वो हर शय में रजनी को देखने लगा, आसमान में, सितारों में, चांद में, सूरज में, कलियों में, फूलों में। जिस तरफ नजर उठाता था रजनी ही रजनी दिखाई देती थी।

0: एक दिन अचानक उसकी नजरों ने उस रजनी को देखा जिसे वो हर शय में देखना चाहता था। रजनी अपने घुटनों पर अपना सर रखे कॉलेज के लॉन में बैठी थी। कुछ किताबें उसके सामने पड़ी थीं। राकेश रजनी को बहुत देर तक खड़े देखता रहा। उसका जी चाहता था कि वो रजनी से पूछे वो इस तरह उदास क्यों बैठी है, लेकिन कैसे पूछे? उसने तो आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं की थी। लड़की से बात कैसे की जाती है वो नहीं जानता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो पूछ लेता कि लड़की से बात कैसे की जाती है। उसने कभी रजनी को किसी लड़की से बात करते हुए भी नहीं देखा था जिसकी मदद से वो रजनी की उदासी का सबब पूछ सके। कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि वो खुद उससे बात करे। वो आगे बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता रजनी के पास पहुंचा, कुछ देर रुका, फिर धड़कते हुए दिल से बोला,
1: रजनी जी,
2: जी
1: बुरा ना लगे तो इस उदासी का सबब पूछ सकता हूं आपसे?
2: जी नहीं, कुछ भी तो नहीं।
1: कहते हैं बता देने से दुख आधा रह जाता है। बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बताइए ना, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूं। आपको बहुत अच्छा समझता हूं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आपकी कोई मदद कर सकूं तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
2: मैं मुसीबत में फंस गई हूं राकेश जी।
1: राकेश जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ?
2: मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, आपका नाम कैसे ना जानती होंगी?
1: इस कॉलेज में तो बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन मुझे तो किसी का नाम नहीं मालूम। हाँ, आपका मालूम है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मैं ये समझूं कि मैं भी आपको बुरा नहीं लगता?
2: आप एक अच्छे आदमी हैं, बुरे क्यों लगेंगे?
1: चलिए तो फिर बिला झिझक बता दीजिए कि आप अचानक किस मुसीबत में फंस गई हैं।
2: मेरे माता पिता नहीं हैं।
1: ओह,
2: सिर्फ बड़े भैया हैं। मुझे अच्छी तालीम दिलाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। आज मैं उनसे कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए पैसे लाई थी, बस मैं किसी ने मेरा पर्स खाली कर दिया। सोच रही हूँ भैया को जाकर किस मुंह से कहूं कि मुझे और पैसे दे, और ना कहूं तो फीस के पैसे कहां से लाऊं?
1: रजनी जी, किसी ने ठीक कहा है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इतनी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं?
2: मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है राकेश जी, मेरे लिए तो ये पहाड़ से भी बड़ी है।
1: लेकिन अब नहीं है, आपकी फीस कल जमा हो जाएगी। चलिए चलिए, अब उठिए, उदासी को यहीं छोड़ दीजिए, अब आइए कॉफी पियेंगे।
2: चलिए।
0: रजनी और राकेश को एक दूसरे को पहचानने में देर नहीं लगी, एक दूसरे के करीब आने में देर नहीं लगी, एक दूसरे का हो जाने में देर नहीं लगी, और बिल्कुल देर नहीं लगी राकेश का वो सपना पूरा होने में कि वो रजनी के साथ बैठे, उससे बातें करे, हंसे, उसका हाथ थाम कर उछले, कूदे, नाचे, गाए।

0: रजनी के बड़े भैया सूरज रजनी को बहुत प्यार करते थे। उसकी ख्वाहिश थी रजनी खूब पढ़े और एक दिन किसी बहुत अच्छे घर के बहुत अच्छे लड़के का हाथ थामकर अपने घर जाए। एक दिन अचानक सूरज ने रजनी और राकेश को एक दूसरे का हाथ थामे एक पार्क में घूमते देख लिया। उसने राकेश का नाम पता मालूम किया और फिर एक दिन वो राकेश के पिता से मिला और दोनों की शादी की बात की। लेकिन जैसा कि इस समाज का रिवाज है, राकेश के पिता ने दोनों के बीच गरीबी और अमीरी की दीवार खड़ी कर दी, जिसे फलांगना सूरज के बस में नहीं था। सर झुकाए हुए वो घर लौटा। रजनी ने अपने भैया को कभी इस तरह उदास घर आते हुए नहीं देखा था। वो परेशान हो उठी।
1: क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी है क्या?
2: नहीं।
1: आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं चाय बनाकर लाती हूँ। क्या हुआ है भैया, आप बोलते क्यों नहीं?
2: रजनी।
1: हाँ।
2: मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है तुझे
1: भैया।
2: तेरी कोई खुशी अधूरी ना रह जाए, मैंने हमेशा यही कोशिश की है, पर आज मैं मजबूर हूं। आज अपने हाथों से तेरी खुशियों का गला घोटना होगा मुझे।
1: भैया, ऐसा कौन सा कसूर हो गया है मुझसे?
2: कसूर तुझसे सिर्फ इतना हुआ है बहन, कि तू एक गरीब मां बाप के घर पैदा हुई और एक गरीब भाई की बहन है।
1: पिताजी को तो मैंने देखा नहीं भैया, पर आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे। आपने मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं गरीब पा

0: बेटी और एक गरीब भाई की बहन हूं। आपने तो भैया मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। कई जन्म लेकर भी मैं आपके एहसान नहीं उतार सकती भैया।
1: पर आज उन सब पर पानी फिर जाने का वक्त आ गया है। रज्जू, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तू शायद मुझसे नफरत करने लगे।
0: भैया आखिर बताइए तो सही कि हुआ क्या है।
1: तुझे तुझे राकेश को भूलना होगा रज्जू।
0: राकेश को भूलना होगा, लेकिन आप राकेश को कैसे जानते हैं?
1: मैं राकेश को अच्छी तरह जान गया हूं रज्जू, अच्छी तरह जान गया हूं। वो एक अमीर आदमी का बेटा जरूर है मगर बुजदिल है, कायर है, मेरी बहन का हाथ थामने के काबिल नहीं।
0: भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप राकेश को कैसे जानते हैं? वो कायर है, ये आपको कैसे इल्म हुआ? वो आपकी बहन का हाथ थामने के काबिल नहीं है, ये आपने कैसे जाना?
1: आज उसके घर गया था, उसके पिता के पास, राकेश के साथ तेरी शादी की बात करने।
0: फिर
1: लेकिन उसके पिता ने एक गरीब आदमी की बहन को अपनी बहू बनाना मंजूर नहीं किया। उस लड़की को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया जिसके भाई के पास कोठी नहीं है, कार नहीं है, घर में ऐशो आराम के सामान नहीं है। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मुझे सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं तुम्हारा भाई हूं रज्जो, तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखना मेरा फर्ज है।
0: भैया
1: बस इसी फर्ज की अदायगी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। रज्जो, जमाना बहुत खराब है और हम बहुत गरीब, इसीलिए मैंने सोचा जल्द से जल्द तुम्हारी शादी राकेश के साथ कर दी जाए।
0: भैया,
1: इसीलिए मैं उसके घर उसके पिता से मिलने भी गया।
0: और राकेश?
1: वो भी वहीं था रज्जू, चुपचाप खड़ा अपने पिता के लेक्चर सुनता रहा। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सर झुका लिया। वो कुछ कहता तो शायद मुझे हौसला मिल जाता, पर उसकी खामोशी ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं चुपचाप वहां से चला आया रज्जू। इससे पहले के बाद कोई और मोड़ ले ले तू उसे भूल जा। मैं जानता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मुश्किलों पर काबू पाना ही बहादुरी की पहचान है, और तू तो बहादुर है, इस मुश्किल पर आसानी से काबू पा लेगी। भगवान तुझे शक्ति दे, जिस शक्ति के सहारे तू अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारे।

0: फिर बहुत जोरदार जलजला आया, शहर तबाह हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें मिसमार हो गईं, हजारों लोग मलबे के ढेर के नीचे दबके रह गए, अनगिनत बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, पर बचाए कौन? बचाने वाला कोई नहीं था। कहीं कहीं कोई जो बच गया था इतना खौफजदा था कि किसी को बचाने के लिए किसी भी टूटी फूटी इमारत के पास जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर समझता था। राकेश, उसके पिता, उसका सारा खानदान अपनी ऊंची हवेली के भारी पत्थरों के नीचे दबे हुए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ रजनी और उसका भाई सूरज बाल बाल बच गए थे। दोनों मिलकर राकेश की हवेली की तरफ भागे और अपनी जान को हथेली पर रखकर मलबे को हटाया, राकेश को निकाला, उसके पिता को निकाला, उसके कुनबे के बाकी अफराद को निकाला और अस्पताल ले गए। राकेश की दोनों टांगें बेकार हो गई थीं, उसके पिता के दोनों हाथ इस बुरी तरह कुचल गए थे कि काटने पड़े। रजनी और सूरज को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई।
1: आओ सूरज बेटे, ये तुम्हारी बहन रजनी है ना?
2: जी हाँ, यही रजनी है मेरी बहन, जिसने आपकी हवेली की गिरती दीवारों की परवाह न करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी, राकेश की और आपके खानदान के दूसरे सभी अफराद की जान बचाई।
1: हाँ, मैं तुम लोगों के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता। रजनी बेटी, अगर तुम मुझे बाहर न निकालती तो मैं उन पत्थरों में ही दबकर मर जाता।
3: पिताजी,
1: तुमने राकेश की जान बचाई और मेरे कुनबे के बाकी लोगों को बचाया, मगर मेरे पास

0: हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। क्या तुम इस अपाहिज को अपना बना लोगी बेटी? बोलो।
1: हाँ पिताजी।
0: सूरज बेटे, तुमने कहा था कि तुमने रजनी को अपनी बेटी की तरह पाला है। आज तुम राकेश के भी पिता बनकर इस काम को पूरा करो जो मुझे करना था। राकेश का हाथ रजनी के हाथों में सौंप दो बेटे। आज से राकेश की देखभाल की जिम्मेदारी रजनी की है और इन दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। आज तक तुम सिर्फ रजनी के पिता समान थे सूरज बेटे, और आज से तुम दोनों के लिए ही पिता समान रहोगे।

शान फिल्म में आपने आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुना। लीजिए सुनिए रूही फिल्म का नगमा, सुरेश वाडेकर का गाया।

प्रोफेसर प्यारे लाल, अभी आपने इस फिल्म का ये नगमा सुना आशा भोसले की आवाज में, और अब समाप्त कीजिए कर्ज फिल्म से नगमा। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की।

0: सलाम अलैक। आकाशवाणी कारगिल रीजनल न्यूज यूनिट स्पेशल प्रोग्राम्स, जिसमें हम आपके सामने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स उसके ऊपर बात करने के लिए ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, फेमस पर्सनालिटीज को हम बुला लेते हैं यहाँ पे। उनका राय आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उनका नजरिया आप लोगों तक पहुँचाते हैं। जो इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 12 साल आज जो ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए, हम इस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन कंट्री में बैठ के हमारे इंडियंस को कैसा फील होता है, इंडिया में जो डेवलपमेंट्स आजकल देखने को मिलते हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फेमस यहाँ पे कारगिल में एनआरआईज फ्रॉम इंडिया जो दुबई में बेस्ड है, डॉक्टर आजम बदर खान, जिसे पॉपुलरली दुनिया में डॉक्टर नी के नाम से जाना जाता है। आजकल हमारे खुशकिस्मती है कि कारगिल में जो हर साल वो कैंप करते हैं, उस कैंप के लिए आए हुए हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनका नज़रिया हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस मकसद से हमने डॉक्टर साहब को इन्वाइट किया है, अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के डॉक्टर साहब आकाशवाणी कारगिल के स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, तो इसके लिए मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं सर, दूसरा उसके बाद मैं आपको वेलकम करता हूं सर आकाशवाणी कारगिल के स्टूडियो में। सर
1: बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनंत, मेरा ये प्रिविलेज है कि मुझे इस कारगिल के शहर में सरजमीन पे आने का हमेशा मौका मिलता है। हिंदुस्तान से बाहर जरूर हैं मगर हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, और जैसा

0: ने कहा कि यहां की जर्नी मेरी बहुत पुरानी है, 30 साल से ज्यादा हो गया जब पहली बार 1992 में इस कारगिल शहर से क्रॉस किया था। वो उस जमाने में हम जवान थे और मोटर बाइकिंग का बहुत शौक था, और तब से मुझे मैं इस आपके चौराहे पे हम लोगों ने लंच किया था, रहने का भी मौका मिला था। बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं कि हमें द्रास में एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से, तो कारगिल में आना मेरे लिए हर साल मैं वेट करता हूँ इस कैंप के लिए। कैंप एक बहाना है और बहुत अच्छा बहाना है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को के साथ मिल पाता हूँ, उनके साथ कुछ टाइम गुजार पाता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं उन लोगों को अपने खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है, जो कि मेरा एक प्रोफेशन है एज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन, विच इज मोर देन दैट, इट इज नी हेल्थ अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि कैंप एक बहाना है और बहुत अच्छा बहाना है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को के साथ मिल पाता हूँ, उनके साथ कुछ टाइम गुजार पाता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं उन लोगों को अपने खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है, जो कि मेरा एक प्रोफेशन है एज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन, विच इज मोर देन दैट, इट इज नी हेल्थ अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि जिसकी वजह से डॉक्टर नी के नाम से मैं पॉपुलरली जाना जाता हूँ, तो इट इज ऑल बिकॉज of knee health awareness which I am trying to promote.
1: Sir, आपने कहा कि यहाँ पे आना आपका हमेशा एक ड्रीम रहता है कि हाँ किस तरह में किसी न किसी तरीके से कारगिल पहुंच जाओ। ये इनिशिएटिव जो किस चीज से इंस्पायर हुआ है? एक इंस्पिरेशन होगा सर, हर किसी चीज के लिए तो एक इंस्पिरेशन होता है, किस चीज से इंस्पायर हुआ है सर?
0: ये इंस्पिरेशन, हम इंसान हैं, हमारा इस दुनिया में एक छोटे वक्फे के लिए हम आए हैं, एक लिमिटेड टाइम है, ये ऊपर वाला ही जानता है कि हमें इस दुनिया में कब तक रहना है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं, हम सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को, अपने सोसाइटी को दे सकें। और इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर मुझे अपने कंट्री से, मैं बाहर रह रहा हूं और मुझे कंट्री में आकर के अपने हिंदुस्तान में सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है।
1: बिल्कुल सर, एज एन इंडियन प्रोफेशनल सर वर्किंग अबाउट, तो 12 साल जो गवर्नमेंट का है सर
0: जी,
1: आप एक डेवलप्ड कंट्री जो दुबई जिसे जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है, तो आप किस तरह देखते हो सर जो गवर्नमेंट के, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उसमें जो 12 साल गुजरा है, उस चीज को आप किस तरह देखते?
0: ये विदाउट एनी हेजिटेशन आई वुड लाइक टू से कि 12 साल, पिछले 12 साल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर में रहा है, इसमें डेवलपमेंट हुआ ही हुआ है और हो ही रहा है, और इस 12 साल में जितना डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ है इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। कितने सारे हमारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में एडवांसमेंट हुए हैं, रिसर्च के नाम पे काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, हमारे सर्विसेज के इस पे हुआ है। मैं सिर्फ अपनी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस के नाम पे हम एक बड़ा इनिशिएटिव लें, स्पेशली एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ नी डॉक्टर एंड एज अ नी अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस एम्बिशन मेरे अभी एज अ प्रोफेशनल करियर में, मैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ दुबई में, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने ये रियलाइज किया है कि इस दुनिया में लोगों को हम बता सकें, अवेयर कर सकें कि घुटना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा स्लोगन है टेक केयर ऑफ योर नी द वे यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, हार्ट गिव्स यू लाइफ, नी गिव्स यू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो नी की क्वालिटी ऑफ लाइफ से अटैचमेंट जो है वो अवेयरनेस से आएगा। जिस तरह से वर्ल्ड डायबिटीज डे है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, वर्ल्ड कैंसर डे है, जिस तरह से जी बिल्कुल, उस तरह से मेरा विजन है कि हम वर्ल्ड नी डे भी हिंदुस्तान के सरजमीन से हम दुनिया में शुरू करें, दुनिया में ग्लोबल मूवमेंट एक बना सकें, और ये चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि घुटना का प्रॉब्लम शुरुआत जब होता है तब से ही हमें उसके बारे में समझना है कि हम क्या

0: शुरुआत हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि शुरुआत में हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होने के बारे में हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं ज्यादा देर बैठ गया या उसकी वजह से हो गया, और वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा बेहतर फील करते हैं। तो आप वो माइंड में वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये आगे चल के 10 साल 15 साल के बाद खराब होता है, और जब इस लेवल पे आ जाता है कि बिल्कुल खराब हो गया घुटना,
1: चेंज करना पड़ रहा है,
0: तो फिर नी रिप्लेसमेंट होने लगता है
1: और फाइनेंशियल बर्डन भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: जी, फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ इंसान के पॉकेट पे नहीं पड़ता है, ये इंश्योरेंस के ऊपर नहीं पड़ता है, ये गवर्नमेंट के बजट में भी आप देखें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है एज इट इज काफी एक्सपेंसिव सर्जरी है, कुछ लाख लगते हैं एक घुटने को चेंज करने में, तो उतना लाख पैसा जो है वो हमारे उस पर खर्च हो रहा है। नो डाउट उससे आप रिकवर कर रहे हैं। आज के जमाने में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सर्जरी एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल सर्जरी, आपके पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर देता है, बट हम क्यों नहीं उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि हम उसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, बट हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके बारे में अवेयरनेस रहेगा, समझ रहेगा कि क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या खान पान में क्या कमी है, क्या विटामिन डी की कमी से क्या इश्यू हो रहा है, कार्टिलेज कैसे घिस रहा है, डूज एंड डोंट्स क्या है, वो अवेयरनेस से आएगा। वो अवेयरनेस अगर होगा तो ही फिर हम उसको स्लो डाउन कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि पहले के जमाने में 55-60 साल से पहले कोई इंसान कहता होगा कि मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, और शुरुआत इसकी वैसे ही होती है कि हम कहना ये होगा कि हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो मुझे तकलीफ हो रही है, या गाड़ी चला रहे हैं, जैसे अभी आपके रेडियो स्टेशन पे ही आपके कलीग ने मुझसे पूछा कि 2 घंटे अगर मैं कंटिन्यूसली बैठा रहता हूं और गाड़ी से उतरता हूं तो मुझे लंगड़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को समझ आना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, और यही सारी चीजों की समझ नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे करके वो यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, इट गोज इनटू वेयर एंड टेयर ऑफ द कार्टिलेज, विच वी कॉल्ड एजिंग, और उसको डिजेनरेशन बोले और उसको या अर्थराइटिस बोले। वो शुरुआत होती है अर्ली से, हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, वो मॉडरेट स्टेज पे जाता है, तब फिर हमें डॉक्टर कहते हैं कि आपको घुटने में आपका ग्रीसिंग कम गया है, सूख गया है एज के साथ, उसमें वो कीजिए। उसके बारे में भी उसको भी इंजेक्शन लेते हैं, छह महीने आराम फील होता है, 6 महीने आराम फील होता है, हमें लगता है हम रिकवर कर गए, रिकवर नहीं कर रहे हैं। वो डीजनरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी का इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है कि वो बिल्कुल लाजिम है कि हमें डिटोरिएट करते हैं, वो हमें एक्सटर्नल पे दिखता है। अगर अपने आप को ही देखें, 10 साल पहले मैं जैसा दिख रहा था
1: वो आज नहीं दिख रहा है
0: और अगले 10 साल में भी नहीं दिखेगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगले 10 साल में भी हम ऐसे नहीं रहेंगे जो आज दिख रहे हैं, बट हम अगले 10 साल में हम कैसे दिखेंगे ये हमारे हाथ में है। काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने डाइट से कर सकते हैं, अपने रेगुलर एक्सरसाइज से कर सकते हैं, इन चीजों से हम उसको अपने हाथ में रख सकते हैं। तो सेम चीज गोज कि हम एंटी एजिंग घुटने को कैसे एजिंग से हम स्लो डाउन कर सकें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ लास्ट में तो बर्डन पड़ता है, जेब पे बर्डन पड़ता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए, आप सुनते भी होंगे आप इन चीज़ों को, क्योंकि आप इसी फील्ड से, आयुष्मान भारत का आपने सुना होगा, और ऐसे जो इन जैसे स्कीम्स का सर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है पेशेंट्स के, खासकर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको इन स्कीम से कुछ बेनिफिट होते हुए दिखता है सर, क्योंकि आप ऐसे फार फ्लंग एरियाज में कैंप्स करते हैं, फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, तो आज भी आपने कैंप किया है, तो इसमें कुछ इन स्कीम्स का बेनिफिट दिखता है सर?
0: इसमें तो कोई दूसरी जवाब ही नहीं है। आयुष्मान भारत की वजह से लाखों करोड़ लोग जो हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको ये मौका मिल रहा है कि वो अपने इलाज पे खर्चा से बच पा रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज करवा पा रहे हैं। ये इस सरकार का सबसे बड़ा, एज अ डॉक्टर मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर पाऊंगा कि इस सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, जिसकी वजह से लोग को सेल्फ एक एम्पावरमेंट है, उनको ये फील होता है कि अगर मुझे कुछ आज के दिन में कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी होगी या कोई भी प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मैं इजिली जा करके इलाज कर पाऊंगा। इसमें एक चीज सबसे बड़ी हुई है, जो पहले जो गरीब तबके के लोग थे उनको ये कभी सोच भी नहीं पाते थे कि मैं इलाज, अच्छा इलाज करा पाऊंगा। इलाज का प्रोविजन हमेशा रहता है कि आप छोटे से क्लिनिक में जाइए या एवरेज में जाइए या बहुत हाई क्लास में जाइए, मगर वो

0: छोटे से ऊपर एवरेज में भी जाने का नहीं सोच पाते थे। ये आयुष्मान भारत की वजह से हुआ है कि उनको ये इंटरनल एम्पावरमेंट है, सोच है, सेटिस्फैक्शन है, कॉन्फिडेंस है, बैक ऑफ द माइंड में ये सोच है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इस बीमारी से अपाहिज नहीं होना पड़ेगा या मरना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप को इलाज के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट।
1: सर हम सुनते हैं सर, कल आपके जो लास्ट ईयर भी आप जो सर्जरीज यहाँ पे करते हैं तो ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग पे आप फोकस ज़्यादा करते हैं सर, लोकल डॉक्टर्स के जो ट्रांसफर एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और नो हाउ शेयरिंग का, इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट रहेगा सर, खासकर हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे बूम करने के लिए सर, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जो है वो एक हमेशा, कल डी सी साहब ने भी बताया सर कि कारगिल जैसे इलाके में एक बैकलॉग रहता है, एक्सपर्ट न होने की वजह से हमेशा ये बैकलॉग में रहते हैं, तो आप जैसे कैंप्स करते हैं तो इसमें वो पूरा हो जाते हैं। अब वो बैकलॉग जो रहने का सिस्टम था उसको कम करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं?
0: अनायत भाई, आप जानते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने शुरुआत तो की कि मैं लोगों को यहाँ पे अपने सर्विसेज दे पाऊँ, अपने कंट्री मैन को, और स्पेशली दूर दराज इलाके और डिफिकल्ट टेरेन कारगिल जैसे जगह पे, लद्दाख के रीजन में जहां मैंने बाइकिंग स्टार्ट की, मुझे इस जगह से मोहब्बत हुई एडवेंचर के नाम पे लेके, इनकी आपकी जो खूबसूरत आबो हवा है, एनवायरनमेंट है। बट उसके साथ जब ये मौका मिला मुझे कि मैं यहां पे आकर के लोगों को ऑपरेट कर सकूं, उनके प्रॉब्लम्स को जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो श्रीनगर या दिल्ली जाने की नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस में मुझे ये समझ में आया कुछ साल के बाद कि यहाँ पे के जो डॉक्टर्स हैं आपके, दे आर ऑल ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड, वेरी एडिक्वेटली ट्रेन्ड, हाई क्लास ट्रेन्ड हैं, बिकॉज चाहे तो श्रीनगर से या दिल्ली से, जम्मू से, तो उनके पास नो हाउ, नॉलेज सब कुछ है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आपके जो नया हॉस्पिटल है दैट इज ऑल्सो हाई क्लास, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल, वेल इक्विप्ड है। बट एक चीज की जो मुझे कमी दिखी वो दिखी कि डॉक्टर्स स्पेशली इस तरह के मेजर सर्जरी या हाई एंड स्टैंडर्ड की सर्जरीज को करने से हिचकिचाते हैं। हिचकिचाने का भी एक रीजन है क्योंकि उनको इस चीज की ट्रेनिंग भले है वहां पे, बट यहां पे इनिशिएट करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि रेगुलर सिस्टम में वो नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं जब आकर के इन पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूं, उसके बीच में मुझे मौका मिलता है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे जो सीनियर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, या जो मेरे कलीग्स हैं या जो जूनियर्स हैं, उनको मैं अपने नॉलेज शेयर कर पाऊं क्लिनिकली। थ्योरेटिकली दे आर वेरी वेरी साउंड, क्लिनिकली मतलब प्रैक्टिकली। तो जब मैं उनसे, देखिए एक चीज आप भी जानते हैं कि यहाँ पे कैंप के लिए लोग आते हैं बाहर से, बट कैंप में आकर के ऑपरेट करके चले जाना ही मकसद मेरा नहीं है। मेरा मकसद हमेशा रहा है कि मैं यहाँ के डॉक्टर्स को सिखा पाऊं और वो सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना नॉलेज गेन सके, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि वो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सर्जरी कर सके, प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट, सर्जरी की स्टैंडर्ड, वो सारी चीजें मैं गिव एक्सचेंज कर सके और कर रहे हैं।
1: और कितना
0: मुझे इस बार ये फक्र के साथ मैं कह सकता हूँ, या आई एम रियली ग्लैड टू से दैट हमने काफी सारी नी रिप्लेसमेंट्स की हैं पिछले दो दिन में, 25 के आसपास सर्जरी करने, और सारी की सारी सर्जरीज मैंने अपने कलीग से यहाँ पे जो है उनसे करवाई है। ये कोशिश मेरी पिछले 2-3 साल से चल रही है और इस साल मुझे ये सेटिस्फैक्शन, ये खुशी है आज खत्म करने के बाद कि उन लोगों ने खुद से A to Z नी रिप्लेसमेंट मेरे सुपरविजन में किया है और कॉन्फिडेंटली किया है, और वो आगे इस चीज को लेकर
1: आपके बगैर भी कर सकते हैं इसका,
0: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं,
1: हॉस्पिटल कारगिल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं
0: बिल्कुल। मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक के, उसमें मेजोरिटी ऑफ देम दे कैन डू नी रिप्लेसमेंट कॉन्फिडेंटली। तो हमें पब्लिक को भी कहना चाहूंगा हमारे कि आप प्लीज अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें, वो और उनसे आप सर्जरी कराएं, हमारे जैसे लोगों की वेट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपको
1: या इतना ज्यादा खर्चा करके दिल्ली जाने की जरूरत नहीं।
0: एग्जैक्टली।

0: बात है कि खर्चा करके आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि आप बाहर जा करके खर्चा कराएं, यहाँ पे आप करें, वो लोग आपको सबसे अच्छा इलाज देंगे।
1: बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आखिर में सर, हमारा इस प्रोग्राम का एक मकसद है सर, हम अभी गवर्नमेंट के जो 12 साल के अचीवमेंट्स के ऊपर हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं सर, तो एक एज एन इंडियन आप बाहर अपना सेटल्ड है एज एन NRI, तो फेलो इंडियंस जो बाहर आपकी तरह काम करते हैं या अपना जो जीवन बसर कर रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे सर नेशन बिल्डिंग के लिए और जो कम्युनिटीज हमारे जो कारगिल इंडिया की जो हमारे जो फार्म एरिया जैसे कारगिल है उनको सर्व करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे सर, और कैसे उनको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे?
0: मैं अपने सारे इंडियन डायस्पोरा जो NRIs हम कहते हैं जो बाहर हैं, स्पेशली डॉक्टर प्रवासी भारतीय और स्पेशली मैं डॉक्टर्स की बात करूंगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत करें। सोच हम सब में है, मगर सोच के साथ हम थोड़ा सा, सिंस हमारा कनेक्शन थोड़ा दूर हो जाता है तो हमें वो हिम्मत नहीं आता है कि हम कैसे करें। मैं अवेलेबल हूं, मैं अपने सारे डायस्पोरा थ्रू आउट द वर्ल्ड मैं ये कहना चाहूंगा इंडियन कम्युनिटी से कि अगर जो भी डॉक्टर्स चाहते हैं कि अपने देश को हम सर्व कर सकें अपने मेडिकल फील्ड में, प्लीज कम ज्वाइन हैंड विथ मी। माई एसोसिएशन इज कॉल्ड लेट्स वॉक अगेन विथ डॉक्टर नी, एंड हम डेफिनेटली ऐसे दूर दरार इलाके में, पहाड़ी इलाके में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम सब मिल करके अपने देश को सर्व करेंगे।
1: डॉक्टर साहब आपने अपने कीमती वक्त में सर, क्योंकि आप हमें पता है 3 दिन का आपका यहाँ का टूर था, तो इस टाइम वक्त में से आपने टाइम निकाल के हमारे ऑडियंस से, हमारे सुनने वाले देखने वालों से मुखातिब होने का आपने डिसीजन लिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आकाशवाणी कारगिल खासकर रीजनल न्यूज यूनिट की तरफ से। उम्मीद करते हैं सर कि फर्दर आगे भी आप यहाँ पे आके ऐसे जगहों में जाके लोगों का, हमारे कम्युनिटी का उदाहरण सर्विस दे सके अपना, उसके लिए अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कारगिल में हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब राकेश कुमार जी से मुलाकात हुई और ही वॉज वेरी फोर्थकमिंग, वेरी पॉजिटिव पर्सन, ही लाइक दिस इनिशिएटिव एंड ही रियली लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड स्पेशली ट्रेनिंग द डॉक्टर्स। और मैं साथ साथ अल रिजा रिसर्च एंड हेल्थ फाउंडेशन जो हेल्थ विंग है आपके जमात उलमा का, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और यहां पे आकर के सर्व करने का। मैं सारे यहां के जितने एसोसिएशंस हैं, अल बकरिया है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब का मैं बहुत आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू देम दैट दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन कम टू दिस पार्ट ऑफ द इंडिया एंड एज अ इंडियन टू सर्व हियर एंड गिव माय सर्विसेज। इट विल बी माय एंडेवर फॉर ऑलवेज।
1: थैंक यू सर। इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका खत्म पहुंचा है। मैं एक बार फिर आप लोगों से ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी कारगिल बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर अथॉरिटीज को बुला के आप लोगों तक गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर हम बात करते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम और एक एक्सपर्ट को बुला के आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।

0: मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। असलामुअलैकुम। मीडियम में त्रुग्या नंग इश्विश भी नजबी किलोहर्ट्ज़, मीडियम में सोचे नगबिया नंग इश्विश भी नजबी किलोहर्ट्ज़, दोनाची मोबाइल ऐप न्यूज़ अनायरिका अचस आकाशवाणी करगिली का नाजरीन वक्सपू तुसोत गसोंसुक दिरिंग जगपू बोदू जूनिल से चुपदन दिरिंग फ्र चुपोयत भी प्रोग्राम जिबेसला खुरे गचाया ते दोनों क्लब से गची जून सलाम पू फ्रत मचन सोशिक सखबत सिक्स नल्ला दुआया प्रोग्राम सदाकत ला गुजुबेत दि प्रोग्राम रख से कंगन मजत सखम कुरानी तिलावत ना तर्जुमाला मुल्कन पे इन कारी शाकिर कासिमी
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: وَا

उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो।

क्या मैं अल्लाह को छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके।

0: دخصہ سا 35 پوری خبرن لائن یعنی نیت پین میڈیا موی کنگ چیس آکاش وانی کرگی لکا ناظرین نیت وقت پتو سو تغانا منٹ سمچو سنسو کستا پروگرام ین مزید دلوگ سی ہگو پروگرام فرد چکن پین نینا سونکر
1: پراچین کال سے ہی شاک سبزی دال آدی ویجنوں میں مسالے کے روپ میں لہسن کا پریوگ ہوتا رہا ہے لہسن ایک سروشریشت اوشدھی بھی ہے موسم کے انروپ अगर लहसुन का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो मनुष्य निरोगी तेजस्वी और बलवान बनकर दीर्घ जीवन भी जी सकता है। ये एक उत्तम रसायन भी है। ये बुद्धि तथा वायु को बढ़ाता है। सर्दी तथा वर्षा ऋतु में लहसुन का सेवन अत्यंत लाभदायक है। इसके सेवन से वात नाड़ियों पर प्रबल व उत्तेजक असर होता है। पैर का दर्द, पीठ का दर्द, जकड़न, हिस्टीरिया, पक्षाघात, वायु विकार में लहसुन अत्यंत लाभप्रद है। अत्यधिक गुणकारी होने पर ही लहसुन को महा औषधि कहा गया है। आपने देखा होगा कि कुछ लहसुनों में एक ही पोती होती है। ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न लहसुन होता है। किसी लहसुन में एक मोटी गांठ होती है जिसमें 10-15 पोतियां होती है। ये एक पुतिया लहसुन से मध्यम किंतु फिर भी सर्वश्रेष्ठ होता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन बड़ा प्रभावशाली है और इस प्रकार लहसुन दिल के दौरे की बीमारी को रोकने में बहुत कारगर है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चर्बीदार पदार्थ है जो रक्त नलिकाओं में जम जाता है, जिससे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और अंत में दिल का दौरा पड़ता है। 50 मिलीलीटर लहसुन के रस में एक बूंद मूल तत्व मिलता है जिसमें लहसुन के सारे गुण निहित होते हैं। लहसुन में गंधक का एक यौगिक होता है जिसमें डाई एलनीन डाइसल्फाइड, एलनीन प्रोपाइल डाइसल्फाइड और पॉलीसल्फाइड नामक तत्व होते हैं। ये यौगिक रक्त को पतला बनाए रखता है और धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को निकालने का काम भी करता है। लहसुन धमनियों को सिकुड़ने से नहीं बचाता, बल्कि सिकुड़ी हुई रोगग्रस्त धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को निकालकर पुनः ठीक कर देता है। उच्च रक्तचाप में 6 बूंद लहसुन का रस 3 चम्मच पानी में मिलाकर 4 बार पिलाएं। कच्चा लहसुन खाना खाने के बाद सेवन करने से उच्च रक्तदाब ठीक हो जाता है। लहसुन के प्रयोग से क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। क्षय रोग के लिए लहसुन एक वरदान है। हर प्रकार के क्षय को दूर करने के लिए लहसुन अमृत से कम नहीं है। लहसुन में सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है जो क्षय के कीटाणुओं को नष्ट करता है। फेफड़े के क्षय में लहसुन के प्रयोग से कफ गिरना कम हो जाता है। रात को

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्स ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि

0: जरिए जो है पानी को नीचे से बाहर ऊपर जो है उठा सकते हैं और जहाँ जहाँ जिससे जो है आपकी फसल जो है आबाद रहे। तो इसके लिए जो है हम जमींदार को वो खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं तो हम उसको सेंक्शन दे के यानी अप्रूव करके वो बाहर से जहाँ से वो मर्जी ऐसे मशीन को खरीद सकता है और खरीदने के बाद जो है ऑफिस लेके आएंगे, वहाँ पे हम इस मशीन का नंबर शंबर नोट करेंगे और फोटो ले लेंगे। उसके बाद जो है उसके अकाउंट में जो है सब्सिडी हम जो उसका 50% सब्सिडी जो है उसके अकाउंट में रिलीज किया जाएगा, जिससे जमींदार को पानी चढ़ाने में या जहाँ पे जिसके खेत को या जिस बाग में जो ये है उसमें वहाँ तक पानी पहुँचाने में उसको मदद मिल जाएगी।
1: कस जो छा नाता मना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू सो दिन छा यरा नाता स्पेरा ने लगी खिमिल उशद पजू तो पश्चा इजाजत चिताओं में लू जने बो यरा यंग खरचिक दो जॉब एत पजू यरे नाती में मास पर लगा चो फ्रेंड चिकता में दूची यरे मोर्चा जु कस
0: जमींदार कुनला मस दू गुजारिश बेत की दक्षानी जमाने तुस नहसाई का और रिलीज किया जाएगा, जिससे जमींदार को पानी चढ़ाने में या जहाँ पे जिसके खेत को या जिस बाग में जो ये है उसमें वहाँ तक पानी पहुँचाने में उसको मदद मिल जाएगी।
1: कस जो छा नाता मना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू सो दिन छा यरा नाता स्पेरा ने लगी खिमिल उशद पजू तो पश्चा इजाजत चिताओं में लू जने बो यरा यंग खरचिक दो जॉब एत पजू यरे नाती में मास पर लगा चो फ्रेंड चिकता में दूची यरे मोर्चा जु कसा
0: जमींदार कुनला मस दू गुजारिश बेत की दक्षानी जमाने तुस नहसाई का और जो अब हम तमाम सुने कि अभी आजकल ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट छेदू छाना हम खुद देख रहे हैं कि लद्दाख में भी इसका असर जो है ज़रूर पड़ रहा है। यानी मेरा कहने का ये मतलब कि जहाँ जहाँ गा यूरोपियन ला चुड़ी खुशी मतलब मुमकिन में पिन डांगों की वजह से सर्दी की वजह से अब जो है उन इलाकों में भी अच्छे से मतलब ये चुली घुसी हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा जहां जहां मतलब ये चुली घुसी पहले नहीं था अब लग रहा है दे जमींदार कुल्ला की आप डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करके सही वाक़ दिखा यानी मार्च अप्रैल के महीने में हम जो इसके पौधे हम तकसीम करते हैं उस वक्त यहाँ डिपार्टमेंट से रब्ता करके आप उन इलाकों में जहाँ पहले नहीं थे अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये मुमकिन हो रहा है तो उन जमींदारों से गुजारिश है कि वो अपने इलाके में यहाँ से पौधे ले जाएं और वहाँ भी ये आपका चूली और आपका कुशु जो है उगाने की कोशिश करें। यकीनन वो अभी इसी जो चेंजिंग जो आपका ग्लोबल इसका हो रहा है तो उस वजह से आपको पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लग जाएगा और जिससे जो है आपको खाने को जो है वहाँ आपके गाँव में आपको ये चूली और कुशु मिल जाएगा और जो खर्चा होता है आपको बाहर से खरीदने में वो खर्चा आपको बच जाएंगे जो आपको बाकी और चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सपेंशन करें इसी फूड के अंदर तो जिससे जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट जो तरक्की पर आप मतलब तरक्की करेंगे और खुशहाल रहेंगे।
1: कैसा जो लेकिन जो सल्फो व संगता डिपार्टमेंट नागरिक स्कीम करते हुए दर्शक पेरस गाता में मास्क पुन लंगन चुजू हरदमा बेचू गाता में मास्क ने इस प्रोग्राम पर देमो बसिंगे नहीं जितना हो सके कोशिश को दिया बावजूद स्कीम होने का फायदा लेने की आगा सूची का पता मैं नखो
0: वो अभी इसी जो चेंजिंग जो आपका ग्लोबल इसका हो रहा है तो उस वजह से आपको पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लग जाएगा और जिससे जो है आपको खाने को जो है वहाँ आपके गाँव में आपको ये चूली और कुछ मिल जाएगा और जो खर्चा होता है आपको बाहर से खरीदने में वो खर्चा आपको बच जाएंगे जो आपको बाकी और चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सपेंशन करें इसी फूड के अंदर तो जिससे जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट जो तरक्की पर आप मतलब तरक्की करेंगे और खुशहाल रहेंगे।
1: कैसा जो लेकिन जो सल्फो व संगता डिपार्टमेंट नागरिक स्कीम करते हुए दर्शक पेरस गाता में मास्क पुन लंगन चुजू हरदमा बेचू गाता में मास्क ने इस प्रोग्राम पर देमो बसिंगे नहीं जितना हो सके कोशिश को दिया बावजूद इस स्कीम होने का फायदा लेने की आगा सूची का पता मैं नखोगा दुम पता छू से दिस स्कीम पे नखोगा फायदे तमिक में इस फलूस बोगजू छा जो अली रजा साहब गाता स्पेराव लगी खेमे लुशे दुखजू तो उस पर चाँ इजाजत चितामिन दुखजू दिया बो यहाँ यहाँ सच आकाशवाणी करके लिए पूरे टीम ही छोसना ओजू सर मुझेजू यारंजन खसकोन गाती ऑल इंडिया रेडवे थ्रू मीमांस कुन सुपरफुजू दियामा बजू दी खसकोन गाता मीमांस कुन फिलहाल फैन खेचन खसको दिखोकजू यंग खोइंस दुनिया करना फैन खेल मिखरा लुक्सबुक।

0: ज्यादा से मन गारे एक्स्ट्रा यूज पे तंग कि गन यार और गोशा जो सिर्फ एक नांग एनो गारे दुख पे उत्पी ना पेनो गारे रेस बिजली गोशा तंग लेकिन गते जो बाकी मेथखन होने ना गारे रेस बिजली तो गतंग उदूनी वजह से का यानी गन यार यानी पहने नो यानी बचाई बा प्रॉब्लम छिन अगर गन यार दे एक्स्ट्रा बिजली ना अगर गन यार बंद का तो यक ना गन यार देनो ज्यादा गन यार मतलब फन के थोप छिन अदुना छुई जेना छु गन एरेस मन अमूमन ज्यादा जो दखन पे जो यूज बेतांग बाहरला मतलब वो एक कुदरती यानी खुदास गतांग तंखा नि देने गिन गन एरेस ओदो मतलब जाया बेंदो गन एरेस कभी ओदुन ओह बस मजाक पा गन एरेस हमेशा ऑन बजागत गन एरेस तक्सपमेंट की बाहरला चाम चिक सो छुई प्रॉब्लम यो जरखन पो गन एरी लगायोत पना गन एरेस इतना इसराफेत गन एरेस ओदुन इसराफ में बार गोशाजिन गति फिला छु यानी कदर कदर दरिया शवत जबना यानी कदर कदरे गतांग पूरा दरियक लाने जरे लेकिन गन एरेस पूरा छु चाम से गन एरेस नुकसान बेत यानी गुंचास खुना गन एरेस ध्यान निगते थू मी छु निका ध्यान निका गन एरेस ज्यादा अदो निका देना बेत सो गतांग मानव और छुई देना कदर शेष पर गोशेसिन
1: कसा जुनी ती फुजूल खर्चा बचस पो मती कागा तो नुकसान का तो छिन
0: फुजूल खर्चा गतांग माना ज्यादा गतांग नुकसान क्यों है ची का ना नुकसान क्यों आज ना गाने यारांस जैसे कि जानी जान लगाने यारांग माने प्लानिंग में गाने यारी नांग है नुक सब बस एक ज्यादा प्लानिंग योमर गोशीन कि गतेस गमील पो यानी गजान पो नम गाने यारे स्कोलचीन गजुक्शी स्कोलचीन जन ना कतो अगर ओदू गाने यारांग तक्सपा कते ओद ना गाने यारांग बचत ज्यादा बागें चसीन और गाने यारे मतलब एक्स्ट्रा जान माने में क्यों चा जो गता नांग गोशा में तंग ज्यादा से गाने यारे मतलब रुलखानी जान उन में क्यों चा ताकि गाने यारांग नुकसान छतंग अगर रुलखानी जान उन कतो गाने लेकिन फिर भी गतेस क्यों अतंग लेकिन दूस गतंग नुकसान तंग गन यारेस मतलब ओदे जानुन में क्यों चा खामा कि दू हेले जिकचा यो जरंगा राना पता ओची ना ओदे जानुन में क्यों न कतो गन यारा ज्यादा पेने नो मतलब बचत छचिन गन यारी नांग ओने नो गति जिंग सगे कछा तंग ज्यादा से ज्यादा गन यारेस जान ओदू न्यूज बचा यानी न कि गते जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग दक्षिण गति फास्ट फूड का ज्यादा यानी देना छतंग तो गन यारेस बाहर जान अवॉइड ज्यादा बचा खामी जान ज्यादा गन यारेस कोले जचसपो मतलब गति का फन के छचिन फ्रून लेना गन यारे जब तक गन यारेस अमाल बसे मैंने फ्रून लोपियस मीन गन यारे ना पहनो ओदी चीज उनका तो गोल ना यानी बचत गचू को बचिन जेरे गतेस गचू को देना बचिन जेरे गतेस का तो ना पहनो हमेशा दिया कोल इनका तो दुख ना गति फ्रून खुद ब खुद गति का यानी खुश बचत बा सब चीन
1: गति ना पहनो गतेस गाचुक्स गतेस लास का तो गतेस बार गो शेजिन गावी का ना तंग ओदो निका ना फन खे मामो थबे तंग दिस बसे गती ना नुक बिन मी चीज आत कुन स्ट्रोंग से लुसे तंग निगा तंग अर गोस पे हिसाब संग गतेस कोल ना का तो ओदुन योंग मी गा तंग ए गा तंग ए मी हिना ने अलजान या गा तंग योंग मी लो ने नु गा ता दु निका ना तंग फन खे थबे तंग दु गतेस गाचुक्स शि बारो बसे बार गो शेजिन
0: स्कूल भी देने नो जरने का तो सबसे ज्यादा गतांगा ना हाँ सिटी ना चीज़ रूंगा ता गाँव ये नो ना सबसे ज्यादा गाने यारा फन के दिया तांचिन की गाने यारे गति लोकल थप यूज बना गाने यारी लोकल थप यूज बना क्योंकि दू ओदे थप है तंग मौत भी चीज उन गाने यारी लगा अवेलेबल यो चीन जो गति यानी गति लैंड सके कनिया गति जिंग विंग से क्या करते हैं कना अतंग थोबे तंग लेकिन गाने यारे ज्यादा यूज ची बे जबाना गाने यारे ज्यादा गैस यूज बे जो इलेक्ट्रिसिटी कना मतलब स्कूल जो ओदी कना यानी देन था वो तंग से गाने यारे स्कूल तंग उसकी वजह से भी गाने यारे नो मतलब खर्च नो मतलब ज्यादा ओदे नो देना छचिन तो अगर खर्च बचाई बेत का तो जेर न सम न का तो गाने यारे ज्यादा थप कोलचा उसकी मतलब रुगुन लग का तो जेर न थप न माना गाते फिलहाल ज्यादा मतलब जितना हम यूज कर सकते मतलब ज्यादा से ज्यादा लोकल थप पो का तो यूज बना गन यारा बचत पो
1: लुशियान ज्यादा मती का ना पेने
0: नुकसान छेद खर्चा
1: का तो कोल ना का तो Nichigan yan ngatez ngati achen mon na ngatez tena bar gosha dohen jongati achen mon na taks pachar gosha
0: taks pachar gosha zin king ngatez ngati nangun yani ngatez ngati achen mon is malab nang pu gachu ngatez nangi has holi bachat gachu bachin zare achen mon lar taks pa umar gosha zin kyunki zan van zare sus kol na chibana achen mon is bachazin to achen mon la pata umar gosha zin

0: ये कहना गलत होगा कि हम उसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, बट हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। समझ रहेगा कि क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या खान पान में क्या कमी है, क्या वाइटामिन डी की कमी से क्या इश्यू हो रहा है, कार्टिलेज कैसे घिस रहा है, डूज एंड डोंट्स क्या है, वो अवेयरनेस से आएगा।
1: डिप्टी कमिश्नर नुब्रा मुकुल बेनिवालिस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नुब्रे समर सिगला सुनील तलुक्स फे मीना सिक्स कोरबस गवर्नु कॉलेजी समा एकेडमिक बुलागुन कॉलेजी ऑडिटोरियम दुना हॉस्टल सहूलियत दृश्य इक्योतीन दिवसला डिप्टी कमिश्नर मुतालक खखुरुन ला दी लसुन वक्स नाल जोंस घर के बसे थमा थुन चुगजरे खसकोन तांस गाज बसे बेजरला एकेडमिक लोला गोजुक छाव बसांस नला दि बिल्डिंग पुगरल सिरबा इन चशोक जान चोसला बिल्डिंग पे नाल जोंस और गोज दोते एक घर गया ग्रहल सिर उन सगा और सिगला सिवक्स ला ग्रहल सिर बोझ जरियांग खास कौन था सेन पुर्गी खबर ला हिंते आकाशवाणी करगिल के नस ना बिंची गोत यूनियन टेरिटरी लद्दाख से समाजी ना कबायली फंतुक डायरेक्टर डॉक्टर जाहिदा बानुस लद्दाख से अनुक CPWD ना NHIDCL पे नाल जोंस मले अनुक क्यों ची गोत खन यर्गिया सिल्ला सुने तालुक्स बेमी ना जिक्स खोर बस दिवसला डायरेक्टर इस लोकसो प्रोजेक्ट उन्हें लसुने का अर्गिया लबसे थिक बस इन खोज जान दी अर्गिया से लसुने लसुन मलयंखों खान मुताल्लुका खा खुरुल्ला वक्स नाल जोंस और ग्याला बसे घर गया बहुत जरे खास को आतांस गाज बसे दी सुहूलिया तुने का ना मीमांसुन ला फनक्यों लेप चुकपा अंगियन चचोक जाओ ना सोचला हफ्ता बारी छम्सखान ला सुने स्कोर ला रिपोर्ट उन सगांस तो जरे असर से गवे का खकुर उन्हें और ग्याला जोस्ते का छमशुक से वक्स नाल जोंस उस्ताते जरे डायरेक्टर ला अर्थियंग मबस निवासला डायरेक्टर निगम्बो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर करगिल अकाउंट्स ऑफिसर चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करगिल सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग दुना सोशल न ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टोरेट अशुक से एक उत्पिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी फैसार गल भी लोखाची वसला भारत दिफाई खुद प्यानुक ले गिना लक्षेपन गिर जानी से इंजर सरसद कौज बस दिफाई चला उन्नीस ग्री ती नाल जोस खुरा अर्ष चेमी ना फन खे सो से इंजर एसर इन जिनाब मोदी खुरी सोशल मीडिया अकाउंट माई गाउ पेस्ट्रोलिका कल्स खन प्रिंट प्याज ग्री तीस गोसलश नम सदन छुनु खुरी दिफाई खुत उन खुत चन चोसत नस ग्री खुरी अनुक चोचा उस बसे सो से इंजर असर इन रारोस पे चला किस गखिल स्कोर ला वर्किंग ग्रुप पर गया तिरसी ब्रिक्स ग्रप्स पर बाहर आती ब्रिक्स गोयत यंग वर्चुअल जोस्ते का ग्रल सिर बस यंग रारोस पे चला किस गखिल ब्यूरो NCP से बाहर आते और ज्ञानक इथोपिया इंडोनेशिया रूस जुनूबी अफ्रीका द्वारा मुत्तहिद अरब इमारात मंदूबीन सगिस दी ग्रप्स प्यांग खकलेंस ग्रप्स वक्सला मंदूबीन सगिस और रारोस पे चला किस यस्त्री तीन अमजे स्कोर ला रिपोर्ट उन चिक नची गतां से दी लसंगन पे कना योतखन जोखर इन स्कोर ला स्पेराउन पुडुचेरी काबिनेट ने दिलिंग समा वजीर सुम मस्त्रे से वजीर ने काउंसिल पुला तांसखन स्केत पुग घर गया सोसिन ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ना थुते उत्खन लक्ष्मी असेंबली पी राजा विलोना वीपी सिवा कोलोना दू दोना बीजेपी एमएलए जेएन एसराज सैक्रोनला लोक निवासिंग मलिंग्यों खन तकरीब प्यानुक वजीर ने जोस्ते का नस्कल्स यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन इस खगिना उनको कस कल बसों देवर वजीर आला एन रंगसामी वजीर उन एमएलए दुन ए सीनियर ऑफिसर उन सगस दी तकरीब यंग खगले निर्गप न सोम वजीर उन ला मुबारकबाद तंस लोकसभा स्पीकर ओम बिरलास दिलिंग महाराणा प्रताप इसके जग पुनजुम से खो छुक से बल्टन फ्रचुक सोशल मीडिया पोस्टी का जनाब बिरलास महाराणा प्रताप इस कैंपस गैस्ट्री तिमी ना वकूब बस खन इन मिंजर कबलस बर्दो ना सुर सुर चंद नमजा इन नसांस गैस्ट्री तीस ट्रोन लुक सचिक खींची दुनियार गैस न चिकडी लिमीना मन अच्छा छम्स दो एक लक मर्सस भारत जांस मंथंग टंग गा काबुल ला कल इन फिर माई वजारत इस अफगानिस्तान मीमा सुनी फंथो मीना मीमा से रोक से गोम्बा ने फिलर तन पर रोक से और थियंग मांग बस कसता खबर इंसान से का नमजे स्कोर लदरिन करगिल और मीमा नमजा और थांसल जान दिन यमी छति थिक पुकारगिल निशुर सखनी से शारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थिक पुचुनी से शारिया अर्थुन डिग्री सेल्सियस और तख नबस लदरिन यमी छति थिक पुचुस द्रु शारिया ग्यार डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थिक पुर्दुन शारिया निस डिग्री सेल्सियस और तख नबस द्रासल तिरिन यमी छति थिक पुचुरु शारिया और गुड़ डिग्री सेल्सियस दिया नचोसला गोंदे सनी छति थिक पुर ग्यार शारिया चिक डिग्री सेल्सियस और तख नबस पदुमा दिरिन यमी छति थिक पुचुरु शारिया और ग्यार डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थिक पुर्दुन शारिया और ग्यार डिग्री सेल्सियस और तख नबस खला चे दिरिन यमी छति थिक पुंग निशुर सखसुम शारिया जी डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सनी छति थिक पुचोखा डिग्री

0: تخصصاقپایان تیس پورگی خبرن لا یعنی نپین میڈیا مویکنگا چیس آکاشوانی کرگیلی کنا زیرینه.
1: Jangi business un laske tang mifia lenchik akashwani roks yanti chonglenun local in ya fayuli thoki kain akashwani stanchain customer un sapille pis cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chiki ka advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: TLI है ना।
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजमुल अंदराबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। G7 लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए की डिक्लेरेशन की इख्तियार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरे बांडीपोरा, 100 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता न करने का दोहराया अज़्म। और सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। खबरें तफसील से। G7 लीडरों ने आलमी इस्तेकाम सलामती से मुतलिक इशरा को बढ़ावा देने, नीज मुनज्जम जराइम का मुकाबला करने के लिए मुतअद्दिद डिक्लेरेशंस इख्तियार की हैं। एक बयान में इन लीडरों ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मुआहदे को इलाके में तनाव को कम करने का एक अहम मौका करार दिया। G7 ने एक और ऐलानिया के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत कौमी सलामती, सेहत आमा और इक्तिसादी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियान फ्रांस में G7 इजलास के हाशिए पर जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। दरी असना वज़ीर आज़म ने G7 इजलास के दौरान एक अहम वर्किंग सेशन से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, नई सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों से भारत ने पैगाम वाजह कर दिया है कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क्यादत में कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता लाने के मुल्क के अज़्म से घरेलू सलाहियतों को तकवियत बख्शने के साथ साथ फौज की तमाम शाखों में जदीदकारी लाने में भी मदद मिली है। उन्होंने पिछले 12 बरसों के दौरान दिफा के शोबे में मुल्क के सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाहो बहबूद के लिए जारी इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संघीय बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, पानी और दीही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुक्म जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। वज़ीर आला के दौरे बांडीपोरा के हवाले से हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने हमें ये रिपोर्ट दी।
7: वजीर आला ने अपने दौरे के दौरान तकरीबन 100 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का ई इब्तिदा अंजाम दिया। इन मंसूबों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजन का एडिशनल ब्लॉक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एजस, मरकुंडल हाजन सड़क, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा, कार पार्किंग बांडीपोरा, वाटर सप्लाई स्कीम ओनागाम समेत मुतअद्दिद अवामी फलाही मंसूबे शामिल हैं। वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम करदा स्टालों का मायना किया और इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मुस्तहिक अपराध में चेक, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के मंजूरी नामे और जिस्मानी तौर पर खास अपराध में स्कूटीज की चाबियां भी तकसीम की। वजीर आला ने जिले में जारी तरक्याती मंसूबों और अवामी सहूलियात का तफसीली जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवाम को बेहतर खदमात की फराहमी को यकीनी बनाए। इस दौरान मुख्तलिफ

0: उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सरकारी मुलाजिम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: ये जो मंशियात की लात पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असासे थे अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए, कम से कम मंशियात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
1: पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कुलगाम जिले में पिछले दो महीनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और 10 इन्हदामी कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने जिले के तरक्याती कमिश्नर के हवाले से खबर दी है कि जिले में कार्रवाई के दौरान 90 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सर शर्मा ने आज पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा छन्नी हिम्मत जम्मू में डोगरा कल्चरल हार्मनी एंड एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन का अफ्तिताह किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पंपोश कॉलोनी पलूरा जम्मू में खसूसी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत की 12 साल की कारकर्दगी को उजागर किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में क्रॉप इंश्योरेंस से मुतालिक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दीगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खेत बचाओ अभियान की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए किसानों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ किसानों को रागिब किया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12,89,000 किसानों को लाया गया है और 53,58,00,000 रुपए के क्लेम्स भी दाखिल की गई। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से आज डे केयर सेंटर टीआरसी जम्मू में मुआज़ शहरियों की इज्जत अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थी। वजीर मौसूफा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरी एक शमूलियाती और तामीरी समाज वजूद में लाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार ला रही है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को उजागर करें। पार्टी के तर्जमानी आला तनवीर सादिक ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के उर्स के सिलसिले में जायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने मुतादिद सियाहती और मुहिमजोई मराकज मुसलसल बंद रखने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस अमल से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इन मकाम को जल्द अज जल्द खोलने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुख्तलिफ सतहों पर गुनाहों मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में सिल्क समग्रा के तहत 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें काफी तादाद में श्रीनगर जिले के किरमकश हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर मौसूफ ने इस मौके पर किरमकशों पर जोर दिया कि वो अपने आप को रेशम साजी के जदीद तौर तरीकों से रूशनास कराएं ताकि रेशम की पैदावार और मियार में इजाफा हो सके। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और शुमाली जोन कल्चरल सेंटर पटियाला नीज ऑल जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा के बाहमी इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनाकिदा सांस्कृत यात्रा सिंधु दर्शन फेस्टिवल में भारत की सकाफत गोनागुनियत का जश्न मनाया गया और मनुष्यात के खिलाफ मुहिम को मजबूत किया गया। फेस्टिवल के दौरान मनुष्यात से पाक एक समाज के लिए सकाफत अकीदे और नौजवानों को यकजा किया गया। इस मौके पर एमएलए लाल चौक शेख एहसान परदेसी मेहमान खसूसी जबकि एमएलए रामनगर डॉ सुनील भरद्वाज मेहमान जी वकार थे। इस मौके पर और लोगों के अलावा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा भी मौजूद थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से आज श्रीनगर में एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ कलमकार और कॉलमनिस्ट संजय पंडिता के अंग्रेजी शेरी मजमुए सैफरन विंड्स की रस्म में रूनमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब पर साहित्य एकेडमी के एडवाइजरी बोर्ड बराए कश्मीरी के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान मारूफ कलमकार डॉ सतीश विमल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम और कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। आज जमीन के बंजर होने और खुशकसाली की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुशकसाली के असरात से निमटने

0: के लिए बैन अल-अक्वामी ताउन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलोई आफ्ताब 5:19 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म होता है। अगला खबरनामा कल 7:45 पर कश्मीरी में नष्ट होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
1: समयन आदाब। आज का तबसरा लिए मैं शबीर उज़्ज़मा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पायदार और आलमी तरक्की के लिए हिंदुस्तान के अज़म का इआदा करते हुए कहा है कि दुनिया को महज बाहमी ताल्लुकात तक महदूद रहने के बजाय यकजहती एतमाद और मसावात पर मबनी शराकत दारियों की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये बात फ्रांस में मुनक़द G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन से खिताब करते हुए कही जिसका मौजू नई शराकत दारियां कायम करना और बैन-अल-अक़वामी यकजहती की असर नव तामीर था। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में मजबूत बैन-अल-अक़वामी शराकत दारियों के लिए एतमाद बुनियादी अहमियत रखता है। उनके मुताबिक हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत पहले के उसूल पर अमल करता आया है और इसकी खारजा पॉलिसी कदीम हिंदुस्तानी फलसफे वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक खानदान है पर मबनी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में वसाइल की कमी नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की कमी सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म मोदी ने COVID-19 वबा के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से दुनिया के 150 ममालिक को वैक्सीन फराहम करने का जिक्र करते हुए कहा कि आलमी बुहरानों से निमटने के लिए तआवुन और एकजहती नागुजीर हैं। उन्होंने मशरिकी वस्ता में जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तनाज़ियात का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने 3 हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत का मामला भी उठाया और समंदरी रास्तों और समंदरी मुसाफिरों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। फ्रांस के दौरे के मौके पर उन्होंने वहां मुकीम भारतीय बरादरी से भी मुलाकात की। फ्रांस में तकरीबन 1,19,000 भारतीय शहरी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। G7 कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई जो तकरीबन 16 माह बाद दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात थी। दोनों के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई और बाद अज़ां बाकायदा दुतरफा मुज़ाकरात का आगाज भी हुआ। वज़ारती खारजा के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि आलमी रहनुमा दुनिया की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि हिंदुस्तान को मुसलसल 8वीं मरतबा G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। फ्रांस पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो आलमी रहनुमाओं के साथ अहम बैन-अल-अक़वामी मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए पुरजोश हैं। G7 एक सालाना इजलास है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता जमहूरी मईशतों के रहनुमा आलमी इक्तसादी सियासी और सलामती के अमूर पर मशावरत करते हैं। फ्रांस के दौरे से कबल वज़ीर आज़म मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर भी गए जहां उन्हें मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया। ये उनके करियर का 30वां बैन-अल-अक़वामी एजाज है। इस दौरे की एक अहम खसूसियत मुश्तरका ऐलामिया था जिसमें दहशत पसंदी की सख्त मजम्मत की गई। स्लोवाकिया के सदर ने पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी इंसानियत के लिए नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर ग्लोबल साउथ और तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल और खदशात को मुअस्सर अंदाज में पेश किया। उनकी क्यादत में मुल्क में अमन तरक्की और नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं जिनके मुस्बत नतीज सामने आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस दौरे से न सिर्फ हिंदुस्तान के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे बल्कि मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के नए मौके भी पैदा होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों में तरक्याती सरगर्मियों को मजीद वसअत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है जिनमें सियाहत का शोबा खास तौर पर काबिले जिक्र है। हालिया बरसों के दौरान बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है जिससे न सिर्फ मकामी मईशत को फरोग मिला है बल्कि खित्ते की खूबसूरती और सियाहती अहमियत भी आलमी सतह पर उजागर हुई है। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: आकाशवाणी श्रीनगर गना उर्दियन खबर तबसरा मीडियो मुका नजस आकाशवाणी करगिली कना जरिनुत वक्सबू तुसुत उर्गियात सोंसुक तसता मुहर्रमुल हराम।

समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस

0: विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्स ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर

0: भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन

0: शून्य के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment

0: 2021 has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the temple with River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the corridor is providing ease of access to pilgrims.
1: Kashi mein Modi ji ne bahut kaam kiya hai.
2: Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
1: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
0: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
3: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that the conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्द तराजी, मसनूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल।

0: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकत दार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाजा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवा साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेले हेनाम्फ ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत AI के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी और इख्तरात से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रूपये से जायद मालियत के मुतादिद बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों की मंजूरी दी है। इन मंसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामील करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असरे नौ तामीर शामिल है। इन इकदाम से रेलवे ऑपरेशन की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खत्ते में रेलवे राबते को मजीद मुस्तहकम

0: چرچک ها بشه. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हों, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन

0: 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
1: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन
2: میڈیم کے گزس آکاش وانی کرگیلی کا نظین وقت پتو سترگو نو منٹ سمچے سنسو کا سطح اردیم فیچر چکن مزید میرے کھائے حق

0: होती रहेंगी। हजारों हंगामे बरपा हुए हैं इस हरजमीन पर और होते रहेंगे।
1: लेकिन आज से 1350 बरस कबल सहराए करबला में जो अजीम कुर्बानी पेश की गई, आलम उसकी नजीर न पैदा कर सका और न कर सकेगा।
0: इसमें शक नहीं कि दुनिया का हर वाकया तारीख में एक खास अहमियत रखता है, लेकिन उस वाकये का ताल्लुक अपने महल वकू के एतबार से किसी खास जगह, किसी खास कौम और किसी खास तबके से होता है।
1: लेकिन वाकाए करबला का ताल्लुक बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम नूए इंसानी से था और रहेगा।
0: करबला के सहरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह ताला वजहू के बेटे और फातिमत जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों ने 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी के चंद घंटों में कुछ ऐसी निराली और अनोखी कुर्बानी पेश कर दी जिसने न सिर्फ दुनियाए इस्लाम बल्कि दर हकीकत दुनियाए इंसानियत में एक अजीम शान इनकलाब पैदा कर दिया। कुर्बानी इसी कदर बुलंद थी जिस कदर इसका मकसद बुलंद था।

0: हुसैन नाना की आंखों का तारा है। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को अपने कांधों पर बिठाए मदीना की गलियों में घुमाया करते।
1: गरज सरवरे कायनात की पाक सोहबत में हुसैन अलैहि सलाम ने बचपन ही से इस्लामी अमूर की अंजामदही के तौर तरीके सीखे। ईद के रोज पैगंबर आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन और उनके भाई हसन के लिए नाका बने। सजदे की हालत में शहजादे कांधे पर चढ़े और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ मामूल सजदे में तूल दिया।
0: लेकिन अभी हुसैन अलैहि सलाम बच्चे ही थे कि शफीक नाना का साया जाहिरन सर से उठ गया।
1: रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकल के चंद ही महीनों बाद हुसैन अलैहि सलाम की बुजुर्ग मर्तबा माँ फातिमतु जहरा भी हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गई।

0: इनकार के नताएज इमाम पर रोशन थे, इसलिए उन्होंने 28 रजब 60 हिजरी को नाना का शहर मदीना छोड़ दिया। हुसैन के साथ उनके अहलो अयाल के अलावा दादा अबू तालिब की जुर्रियत भी थी।
1: औरतों और कमसिन बच्चों के हमराह होने से साफ तौर पर आयान था कि आपका इरादा जंग करने का नहीं था। जंग की नीयत होती तो एक इशारे पर हजारों लोग साथ में चलते।

0: नवी मुहर्रम को सूरज तुलू होता है।
1: इस तरह नवी मुहर्रम को बवक्त असल अचानक फौज हुसैनी पर हमला कर दिया जाता है।
0: लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने शेर दिल भाई अब्बास को भेजकर एक रात की मोहलत तलब करते ताकि ये रात अपने खालिक की इबादत में बसर कर सके।
1: ये शब आशूर है, ये शब आशूर है। अपने साथियों को बुलाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यजीद और इब्न ज़ियाद की दुश्मनी मुझसे है, मैं आप सब पर से अपनी बैयत उठा लेता हूं। आप चले जाओ इस तारीकी में और साथ में हमारे इन मासूम बच्चों को भी ले जाओ। ये कहकर इमाम ने चराग गुल कर दिया।
0: लेकिन अस्हाबे हुसैनी साहिब ईमान थे और जाम शहादत नोश करने के लिए तैयार थे। वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए आमादा न हुए। अलगरज हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी ये रात इबादत इलाही में गुजारते हैं।

0: ये भयानक रात, ये भयानक रात, इब्तिला से लबरेज रात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आखिरी रात।
1: कयामत की ये रात खत्म हुई, सफेद ए सहरी नमूदार हुआ ये 10 मुहर्रम का दिन।

0: दस मुहर्रम का दिन।
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अस्हाब व अकरबा के साथ नमाज सुबह बाजमात अदा की।
0: उधर फौज मुखालिफ का समंदर सामने ठाठे मार रहा था। इमाम हुसैन ने अपने छोटे से लश्कर को, जो कुल 72 नफूस पर मुश्तमिल था, तरतीब दिया।
1: साथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौज मुखालिफ को याद दिला दिया कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। दुनिया में मेरे सिवा अब किसी नबी का कोई नवासा नहीं है।
0: हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन की तशरीह करते हुए फरमाया कि बताओ, तुम लोग मेरे कत्ल पर किस लिए आमादा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
1: यजीदी लश्कर पर खामोशी तारी हो गई, मगर हजरत हुर जहनी इज़्तिराब में मुब्तला हो गए। उन्हें उनका जमीर झंझोट रहा था। आखिर हजरत हुर यजीदी फौज की सरदारी से मुंह फेर कर खयाम हुसैनी की तरफ अपने घोड़े का रुख मोड़ देते हैं।
0: हजरत हुर के बातिल को छोड़कर हक पर वापस आ जाना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी फतह है।
1: इमाम हुसैन की किरदार साजी से यजीदी फौज का सालार घबरा उठा। उसने हमले का हुक्म दिया।
0: गरज सुबह आशूर का सूरज, करबला के खूनी मैदान में जंग की तैयारियां मुकम्मल पाता है। हुसैनी जमात इतनी मुख्तसर किसे एक फौजी दस्ता कहना भी मुश्किल है। इस जमात में खमीदा कमर बूढ़े भी हैं।
2: 1035 उर्दियम फीचर चिंगे निन्यूत्पिन फीचर्स बिखनपु इनमिन हसन साहू मीडियम विकांगचेस आकाशवाणी करगिल कना जरिन्यू दयांबोंगाची दिरिंग फचुपत पी प्रोग्राम ने वक्सपु थमाथुन अस्कायां एंतामु थुतुक देमन पुंगचां इजाजत छस दिबुस येजू अल्लाह हाफिज।